0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: स्टोरी का पार्ट वन, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो चलते चलते गिर जाता है। स्टोरी का पार्ट टू, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो साड़ी चनिया चोली वगैरह नहीं संभाल सकता है। स्टोरी का पार्ट नंबर थ्री ये है कि मैंने चनिया चोली पहनकर म्यूजिकल चेयर्स खेलना अटेम्प्ट किया। ऑब्वियो मैं गिरने वाली थी, बट आई वॉज होपिंग दैट आई फॉल ऑन सम रियली क्यूट गाय। लेकिन मैं ऑफकोर्स पुष्पा मासी की गोदी में गिरी। इट वॉज सो एम्बैरेसिंग आई कॉन्ट टेल यू। मतलब लाइक जस्ट द फैक्ट दैट मैं पुष्पा मासी की गोदी में बैठी हुई थी, क्योंकि आई वॉज लाइक म्यूजिकल चेयर्स तो चले जा रहे हैं, मैं आउट भी हो गई हूँ, लेकिन पुष्पा मासी इज इन नो रश टू पुश मी ऑफ हर लैप। इट वॉज द मोस्ट एम्बैरेसिंग गरबा पार्टी ऑफ माई लाइफ, जो कल ही मेरे साथ हुआ है। तो अगर आपकी भी जिंदगी में ना चाहते हुए यू हैव एंडेड अप इन एन एम्बैरेसिंग गरबा पार्टी स्टोरी, हिट मी अप एंड टेल मी ऑल अबाउट इट। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। And while you hit me up on your socials, don't go away anywhere. क्योंकि कहीं मत जाना, वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
1: Hello.
2: अच्छा तो ये कब से लगन लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब। मैं हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आ गए मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
1: क्यों आ जाऊं?
2: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं तुम?
2: वो ये मेमोरी पहचानना बतानी है अंकल।

0: चिकित्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? मेरे को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
0: वही लेवल 7।
1: अरे तो तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
0: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
0: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
1: अबे तू है कौन? तू ये बता
0: ना इसे। ये है 9th level। अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई, तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी में, ठीक है?
0: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा, आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
1: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
0: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: ये एक ऐसा सीक्रेट कन्फेशन है जो इस पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता. आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट. इट इज नॉट नॉटी और एनीथिंग, बट आई थिंक आई नीड रोशिफिकेशन. अगर आप मुझे ऐसा मैसेज लिखकर भेजोगे, आई हैव नो ऑप्शन बट टू रीच आउट टू यू विद ऑल ऑफ माय लव. मेरे साथ है मेरी मिस्टी कॉलर, बट अगर आपके पास भी कोई सिचुएशन इन लाइफ है विच डिमांड्स रोशिफिकेशन, आप हक से मुझे अपना नंबर भेज सकते हो इंस्टा या FB पर, और मैं उतने ही प्यार से आपको वापस फोन करूंगी. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ दबी हुई आवाज में, बिकॉज इट सीम्स लाइक जेन्युइनली शी हैज नॉट टोल्ड एनीवन द सीक्रेट, इज माय मिस्ट्री कॉलर. हेलो बेबी, क्या कह रहे थे आप?
3: मैं कह रही थी ना, दो तीन महीनों के लिए ठीक है, सब बहुत अच्छा चल रहा था, फेरी टेल के जैसे. उसके बाद क्या होता है, मैं कॉल करता, मैंने 7 o'clock कॉल करती थी, हम लाइक 25 मिनट बात करते, हम कर जाते क्योंकि हम अभी दोनों स्टडी है ठीक है, तो लाइक स्टडी भी मैनेज होती है, जो कुछ सही चल रहा था. लेकिन वो थोड़ी देर पहले ऐसे मैंने 7 बजे फोन किया, सब बढ़िया था, वो कहता मैंने ना चीज बताने तेरे को. कहा बताओ? कहते कि उससे पहले एक क्वेश्चन का जवाब दे. मैं कहा कहते कि अगर मैं तेरे को इसके बाद कभी फोन ना करूँ तो मेरी क्या रिएक्शन होगा? मैंने पहले तो देख, मेरे को ट्रस्ट

0: ट्रैफिक शिफ्ट नहीं है, मतलब यही होगा कि कुछ ना कुछ पंगा हो गया पूरी लाइफ में, कुछ हो गया जिसके कारण वो फोन नहीं कर रहा, तो आई लाइक जस्ट ठीक है. तो वो कहता है मैं तेरे को थोड़ी देर में फोन करता हूँ, जाली कर दी, ठीक है कोई बात नहीं, कह रहा 10 मिनट में करता हूँ. हाँ ठीक है, 10 मिनट बाद फोन आता है. वो रो रहा होता है, बहुत बुरे तरीके से रो रहा था वो, पता अपने घर से दूर था ना पानी या कुछ, बहुत बुरे तरीके से रो रहा था. उसके बाद ना फिर वो मेरे को कहता कि मेरी ना लाइफ में कवर है मेरी एक्स, वो बहुत ज्यादा प्यार अभी भी करता. तो मैंने उससे कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम सॉर्ट कर सकते हैं. कहते नहीं मेरे को पहले थी, अब है दोनों में कुछ भी नहीं चाहिए.
1: एक सेकंड, तो उसकी लाइफ में उसकी एक्स वापस आ गई एंड ही इज टेलिंग यू कि मुझे ना वो चाहिए ना तू चाहिए. तूने क्या बोला? तो ही जस्ट सेड कि अब ये नहीं हो सकता, ओके चल टाटा बाय बाय बस. That's it. ये कितने टाइम पहले हुआ है?
0: एक हफ्ते पहले.
1: How are you like coping with it? तेरी जान नहीं जा रही है to know कि इसने तो देखो फोन करके बोल दिया कि भाई मैं तेरे को फोन नहीं करूंगा आगे से कभी भी.
0: मैंने इसको कॉल किया, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया.
1: ब्लॉक कर दिया है भाई, तो कुछ नहीं कर सकती है और मैं भी कुछ नहीं कर सकती. पर अच्छा ये तेरी जिंदगी से अपने आप ही कट लिया. इस बंदे के साथ होने से बेटर है नॉट बीइंग विद अ गाय लाइक दैट, यू नो व्हाट आई मीन. है ना? Do you totally realize that correct? कि this guy is a loser. ऐसे रैंडम फोन करके बोल रहा है कि 7 महीने हो गए. कोई 7 महीने हो गए थे ना तुम्हें?
0: 3 महीने.
1: Also यार, that's like a really big time. What a douchebag. तेरे को रोशिफाय कर दूँ? There you go. Sorry.
2: You've been roshified.
1: थोड़ा सा बेटर लग रहा है? इस बंदे को अगर मैंने कहीं देख लिया ना, इसका इतना थोबड़ा मार मार के तेरे को फोटो भेजूंगी ना मैं इसकी, प्रॉमिस. ओके आई लव यू. ओके बेबी जा, कोई बुला रहा है. बाय बाय. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह समवन हैज बीन सच अ कंप्लीट इडियट विद यू एंड यू वांट टू टॉक अबाउट इट एंड गेट रोशिफिकेशन, बी माय मिस्ट्री कॉलर, फील फ्री टू डू दैट. जस्ट हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉकस्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: हाय हाय, पता है ये जो बुटीक की आंटियाँ हैं ना, बहुत बिजी होने वाली हैं। मैं तो पहले ही बता रही हूँ, इसलिए फ़ोन किया है कि जो भी चनिया चोलियाँ बनवानी हैं इन्हें अभी कर लो, नहीं तो बाद में आप वेटिंग लिस्ट पे ही लगे रहोगे और फिर पुराने कपड़े पहनने पड़ेंगे, उसमें मज़ा कोई नहीं आता है। माई मासी एक्चुअली पिक्ड अप द फ़ोन एंड कॉल्ड ऑल द वे फ्रॉम लंडन टू से कि बेटा देखो, यहाँ जो है इंडिया में तुम्हारा फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है और हमारा भी लंदन में हो ही गया है, क्योंकि आई थिंक लंदन इज़ मोर पिछड़ा हुआ देन इंडिया, बट दैट्स अ डिबेट फॉर अनदर टाइम। तो मासी ऐसे ना ग्रुप कॉल कर रही है सब लड़कियों को कि अपनी ना चनिया चोलियाँ सिलवा लो, नहीं तो जो बुटीक वाली आंटी बहुत बिजी हो जाएंगी। एंड यू आर लाइक, मासी आपके पास कोई और काम नहीं है ज़िंदगी में, मतलब हमारी चनिया चोली शुड बी आर प्रॉब्लम लेकिन दैट इज़ योर प्रॉब्लम, हमारे रिलेशनशिप शुड बी आर प्रॉब्लम लेकिन दैट इज़ ऑल्सो योर प्रॉब्लम। तो आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है उसका चाचा चौधरी कौन है? पर ये मैं ऐसा पूछ नहीं सकती हूँ बिकॉज मम्मी पहले ही डिस्क्लेमर दे देती है कि यू हैव टू बी वेरी नाइस टू मौसी बिकॉज शी इज़ योर मौसी जी आफ्टर ऑल। तो आपने अपनी बुटीक आंटी से कॉन्टैक्ट कर लिया है या आपने भी पुराने साल के चनिए चोलिए पहनने हैं? जो भी आपकी सिचुएशन है, आई रियली वांट टू नो हाउ यू आर गेटिंग ड्रेस्ड दिस फेस्टिव सीजन, और वो बताने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो ऑन द ग्राम या फेसबुक। एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: मैं इंडिया के फेस्टिव सीजन को देती हूँ 5 सितारों में से 4, और एक क्यों नहीं दिया? उसका जवाब सिंपल है, मैं सिंगल हूँ और सारे के सारे रिलेटिव्स मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी, गरबा नाइट स्लैश पूजो टाइम पर पकड़ के ये ज़रूर पूछते हैं कि बेटा अगली बार तो तुम्हें आना नंबर है, अगले साल हमें गुड न्यूज़ देना है। एंड तब अगर आपके साथ भी यही होता है, डू व्हाट आई एम इंटेंडिंग टू डू, आई जस्ट सेड आई एम इंटेंडिंग टू डू दिस इंटायर फेस्टिव सीजन, और मैं वैसे बाकी टाइम ऑफ द ईयर आपको कहती हूँ कि ये चीज़ नहीं करनी है, और वो है टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। बिकॉज द थिंग इज, हर एक इंसान के पास पॉलिटिक्स के बारे में एक ओपिनियन होता है, करेक्ट? और आप कुछ बोलोगे, 5 जने आपके साथ अग्री करेंगे और 6 जने आपके साथ डिसअग्री करेंगे। अब इस जद्दोजहद ऑफ एक्सप्रेसिंग पॉलिटिकल ओपिनियंस में आपकी शादी बिकम्स ऑलमोस्ट ऑफ नो इम्पॉर्टेंस टू एनीवन एनीमोर। समझे मुन्ना? वेरी गुड। अगर आपको ये सजेशन अच्छी लगी है, नहीं भी लगी है, इट डजेंट रियली मैटर, आई एम गोना डू इट, बट यू कैन हिट मी अप विद योर सजेशंस ऑन द ग्राम या फेसबुक। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो गो अहेड, जानू मानू, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जिंदगी में कुछ चीजें हमेशा कंसिस्टेंट रहती हैं, जैसे मेरे केस में एक हमेशा डड्डू को डेट करना। सोचती हूँ प्रिंस चार्मिंग है लेकिन निकलता वही डड्डू है, गुड ओल्ड डड्डूज। दूसरी चीज जो मेरी जिंदगी में कंसिस्टेंट है, लेट मी टेल यू ऑल अबाउट इट, मैं पहले 80 किलो की थी। जी हाँ जनाब, 80 से 50 की जर्नी हैज बीन अ फेयरली डिफिकल्ट वन, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। एक्सेप्ट जितनी बार भी मैं कोशिश करती हूँ कि स्लीवलेस कपड़े पहन के अपनी गरबा पार्टी अटेंड करूँ, मैं शीशे में जाती हूँ और पहला गाना जो मेरी जहन में आता है दैट इज डोला रे डोला रे डोला रे डोला। मेरे पास एक नहीं दो दो डोले हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी मैं स्लीवलेस कपड़े नहीं पहन सकती हूँ। आई एम नॉट आर्म शेमिंग माई सेल्फ, मैं बस जानती हूँ कि ऐसी बाजू में ले के मौसी जी मैं स्लीवलेस कपड़े पहनकर दूसरों पे अत्याचार नहीं कर सकती, खुद पर भी नहीं। बट दैट सेड, यू नो आई रियलाइज कि कोई भी परफेक्ट नहीं है यार इस जिंदगी में, ना हमारी बॉडी परफेक्ट है ना हमारे रिलेशनशिप्स परफेक्ट है, बट द परफेक्शन लाइज इन एक्सेप्टिंग योर इम्परफेक्शंस। एकदम से ये जो मैं फिलोसॉफिकल हुई हूँ, आई एम काइंड ऑफ प्राउड ऑफ दैट एज वेल। अगर आपने भी जिंदगी के धक्के खा खा के कोई लाइफ लेसन सीखे हैं, देन व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल कंपेयर नोट्स। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE, सो फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक एंड व्हाटएवर यू डू, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Authentic, original, and better than our right.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन आल्सो फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Ashi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: ये एक बहुत ही क्यूट एंड ट्रू स्टोरी है. मुझे एक बंदा मिला ऑन अ डेटिंग ऐप जिसके साथ मैंने राइट स्वाइप कर दिया होगा 2-3 साल पहले. मैं तो बचपन से पैदाइशी सिंगल हूँ. और उसके बाद फिर 2-3 साल बाद मैंने फिर से राइट स्वाइप कर दिया. तो इस बंदे ने मेहनत करके मुझसे पूछ ही लिया कि रोशी मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई. तब भी मैं तुझसे कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहा था, अब भी कर रहा हूँ. प्रॉब्लम क्या है, तू बात क्यों नहीं करी थी? ऐसे पहली बार तूने कॉन्वर्सेशन जब मुझसे शुरू करने की कोशिश की थी तो क्या कहा था? ही सेड हाय. I was like, देख भाई, मेरे पास ना कम से कम 10-15 लोग होते हैं एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम ऑन अ डेटिंग ऐप. अगर तू ऐसा कुछ बोरिंग कह रहा है जैसे कि हाय, देन आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू यू. तो अगर एक डेटिंग ऐप पर आप चाहते हो कि आपको अटेंशन मिले, स्पेशली फ्रॉम अ वुमन, देन एक ट्रिक जो आपको हमेशा याद रखनी होगी इज टू कीप योर मैसेज शॉर्ट, स्वीट एंड टू द पॉइंट. हो सके तो फोटोग्राफ के बारे में कुछ पूछ लो, दैट हे, यू गॉट अ गिटार इन योर हैंड, गिटार बजाती है क्या, और एनी सच क्वेश्चन. बट जहां आपने हाय बोला वहां बंदी का इंटरेस्ट गोज फ्रॉम 10 to 0 इन नो टाइम एट ऑल. तो मेरे इस इंसिडेंट से आप कुछ सीख लीजिए और मुझे अपनी जिंदगी के इंसिडेंट से सीख देने के लिए व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप बेबी, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आपने कभी अपने पार्टनर के साथ इस तरह से लड़ाई की है दैट यू एंड अप रीचिंग अ माइक ड्रॉप मोमेंट और उसके बाद लड़ाई खत्म, क्योंकि आपने इतनी कॉर्नी चीज बोल दी इसके बाद बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है. सो दिस इज अबाउट माय एक्स बॉयफ्रेंड एंड आई. वी वर जो इंटेलिजेंट वाला था, ही एंड आई वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन जो एक आर्ग्यूमेंट बन गई और मैं थोड़ा सा हाँ ठीक है चिल्ला रही थी उस पर और फिर कुछ भी मतलब आर्ग्यूमेंट बढ़ती गई. टिल ही लुक्ड एट मी एंड सेड व्हाई आर यू पुशिंग ऑल माय बटन्स Roshi. एंड आई वाज लाइक मैं तेरे बटन्स पुश करना ही नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ म्यूट का बटन ढूंढ रही थी कि कैसे तेरा मुंह बंद हो जाए, बट वो ही नहीं हो रहा है. एंड देन वी रियलाइज कि क्या माइक ड्रॉप स्टेटमेंट कर रहा है दैट आई डोंट वांट टू पुश योर बटन्स, आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर द म्यूट बटन. अगर आपने कभी ऐसे इंटेलेक्चुअल फाइटिंग की है दैट हैज इन इफेक्ट टर्न्ड यू ऑन एंड झगड़े के बाद यू एंडेड अप मेकिंग आउट टू मेक अप फॉर दैट फाइट, देन हिट मी अप बिकॉज वी ऑब्वियसली हैव अ लॉट इन कॉमन. मेरा नाम है मिर्ची Roshi, नाम की स्पेलिंग है Roshi. तो अब सोच क्या रहे हो, वॉट यू आर डूइंग, हिट मी अप एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: ये एक ऐसा सीक्रेट कन्फेशन है जो इस पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता. आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट. इट इज़ नॉट नॉटी और एनीथिंग, बट आई थिंक आई नीड रोशिफिकेशन. अगर आप मुझे ऐसा मैसेज लिखकर भेजोगे, आई हैव नो ऑप्शन बट टू रीच आउट टू यू विद ऑल ऑफ माई लव. मेरे साथ है मेरी मिस्टी कॉलर, बट अगर आपके पास भी कोई सिचुएशन इन लाइफ है विच डिमांड्स रोशिफिकेशन, आप हक से मुझे अपना नंबर भेज सकते हो इंस्टा या FB पर, और मैं उतने ही प्यार से आपको वापस फोन करूंगी. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ दबी हुई आवाज में, बिकॉज इट सीम्स लाइक जेन्युइनली शी हैज नॉट टोल्ड एनीवन द सीक्रेट, इज माय मिस्ट्री कॉलर. हेलो बेबी, क्या कह रहे थे आप?
3: क्या मैं कह रही थी, मैं कहूं 2-3 महीनों के लिए मैटर थी, ठीक है? सब बहुत अच्छा चल रहा था, फेरी टी होती थी. उसके बाद क्या होता है, मैं उसको कॉल करता, मैंने उसको 7 o'clock का कॉल करती थी. हम लाइक 25 मिनट बात करते, हम कर जाते क्योंकि हम अभी दोनों स्टडी कर, ठीक है? तो लाइक स्टडी भी मैनेज होती, वो बिल्कुल सही चल रहा था. लेकिन वो थोड़ी देर पहले ऐसे मैंने 7 बजे फोन किया, सब बढ़िया था. वो कहता मैंने चीज बताने के को कहा, बताओ. कहते कि उससे पहले एक क्वेश्चन का जवाब दे. मैं कहा, कहते कि अगर मैं तेरे को इसके बाद कभी फोन ना करूँ तो मेरी क्या रिएक्शन होगा? पहले तो देख, मेरे को ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, मेरे यही होगा कि कुछ ना कुछ पंगा हो गया तेरी लाइफ में, कुछ हो गया है जिसके कारण तू फोन नहीं कर रहा. तो

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम के तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जिंदगी में रोमांस और पैशन आ ही नहीं रहा है और आप इतने रोमांटिक हो कि आपके सारे कमरे में स्टफ टॉयज़ हैं, किताबें ही किताबें हैं. बट यू नो व्हाट, फेंगशुई के हिसाब से दैट माइट बी द ओनली थिंग गेटिंग इन द वे ऑफ यू गेटिंग अ पार्टनर इन योर लाइफ. आपको पता है, पहले ना मेरे कमरे में इतने सारे स्टफ टॉयज होते थे, इट यूज टू बी क्रेजी AF टिल आई रियलाइज कि फेंगशुई के हिसाब से अगर आपके कमरे में या आपके बेड पे बहुत सारे स्टफ टॉयज हैं तो आप यूनिवर्स को ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि यार मेरा बेड तो ऑलरेडी भरा हुआ है, मेरा कमरा तो ऑलरेडी भरा हुआ है, इसमें किसी और की जगह ही नहीं है. इट इज सो ऑब्वियस बट आई कंप्लीटली इग्नोर्ड दैट फैक्ट. और उसके बाद जैसे ही मैंने अपने कमरे से स्टफ टॉयज गायब किए एंड आई गेव देम ऑल टू चैरिटी, आई एम श्योर देयर लॉट्स ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन आउट देयर एंजॉयिंग दोज स्टफ टॉयज. वैसे ही डेटिंग एप्स पर राइट स्वाइप, आप ट्राई करके देखो इसे एंड आई हैव अ फीलिंग इट माइट वर्क फॉर यू टू. और व्हाइल यू आर एट इट ना, ये जो मैंने अभी टंग ट्विस्टर बोला है ना, इसे 5 बार बोल के दिखाओ. राइट स्वाइप पे राइट स्वाइप. मैं तो ट्राई भी नहीं कर रही हूँ, आप ट्राई करो. इफ यू मैनेज टू डू इट 5 टाइम्स प्लीज.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है।

0: And you are a rock star. फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन, विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं कि उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अज्जू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: तेरी मम्मी की जय,

लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद है तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

सोचो, एक नया लड़का इंडस्ट्री में आता है, बहुत ही नॉर्मल लुकिंग होता है, एंड ही कम्पीट्स विद अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र एंड सो मेनी ऑफ देम. और फिर उसकी डेब्यू फिल्म को उसी साल मिल जाता है फिल्म फेयर अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फिल्म. पुरानी जीन्स में आप हो श्रेया के साथ. हेलो हेलो, वेलकम. आज भी 1975 में रिलीज्ड एक बहुत ही कमाल की फिल्म, और मैं बात कर रही हूँ फिल्म रजनीगंधा की. कौन थे इसमें? इसमें थे अमोल पालेकर, हु एक्चुअली ही डेब्यूटेड फ्रॉम दिस फिल्म. एंड लोगों को बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, क्योंकि उस समय बच्चन साहब की फिल्म, धर्मेंद्र पाजी की फिल्म, सबकी फिल्में रिलीज हो रही थी, और अमोल पालेकर की फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल जाएगा. दैट वॉज नॉट अ सरप्राइज, बिकॉज ऑडियंस ने जाकर के हॉल में ना इस फिल्म को ऑलरेडी सुपर डुपर हिट कर दिया था. आज इसी फिल्म रजनीगंधा की बात होगी. श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शशि कपूर साहब ने रेकमेंड किया था कि ये जो फिल्म है ना, इसकी कहानी ऑलरेडी विनिंग कहानी है, लेकिन बासु जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की थी, तो ही सेड कि बासु ये तभी होगा अगर तुम एक न्यू कमर को, एक न्यू फेस को लेके आओगे। वेल, मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। इस फिल्म से डेब्यू किया था अमोल पालेकर ने, लेकिन बासु चैटर्जी हु एक्चुअली मेड द फिल्म, उन्होंने कभी भी इस फिल्म के जो कैरेक्टर्स थे, जो मेन लीड थे, वो अमोल पालेकर के लिए नहीं लिखे थे। उन्होंने लिखे थे बच्चन साहब के लिए, और अगर बच्चन साहब रिफ्यूज कर देते तो ही हैड शशि कपूर इन माइंड। उन्होंने शशि कपूर को बैठा करके जब पूरी कहानी पढ़ी ना, तो शशि कपूर सेड कि ये एक विनिंग कहानी है, लेकिन हाँ, इसमें तुम्हें हम जैसे एस्टैब्लिश्ड एक्टर नहीं, एक न्यू कमर को लाना पड़ेगा। दैट वॉज हाउ इस फिल्म में अमोल पालेकर आए। और आपको पता है 1975 जिस ईयर में शोले रिलीज हुई, चुपके चुपके रिलीज हुई, उसी साल रजनीगंधा को मिला था फिल्म फेयर अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फिल्म। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

किसी ने नहीं सोचा था कि मुंबई के आकाशवाणी सिनेमा में रिलीज ये फिल्म बेस्ट फिल्म का अवार्ड ले जाएगी 1975 में। वो भी ये एक ऐसा साल था जिसमें हमने शोले की रिलीज देखी, चुपके चुपके की रिलीज देखी, बहुत सारी हिट फिल्में देखी, बट रजनीगंधा वॉज द वन दैट एक्चुअली वन एवरीवन्स हार्ट एज वेल। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। अब होता यह है कि डायरेक्टर बासु चैटर्जी एक न्यू कमर अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा को लेकर के आते हैं। उनको फिल्म के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिलते, फिल्म के लिए जब रिलीज हो जाती है तो हॉल नहीं मिलते, तो उन्हें थक हार करके मुंबई के आकाशवाणी सिनेमा में इस फिल्म को रिलीज करते हैं। फिर क्या, बाय वर्ड ऑफ माउथ, बिकॉज उस टाइम पे ना फेसबुक होता था, ना इंस्टाग्राम होता था, ना यूट्यूब होता था, ना ही केबल चैनल्स होते थे, ओटीटी प्लेटफॉर्म तो ऑफकोर्स नहीं होते थे। सो बाय वर्ड ऑफ माउथ ये फिल्म लोगों तक पहुंची और उसके बाद इट वॉज अ मैसिव हिट। तो सोचो, डिफरेंट हॉल्स में ना रिलीज हो करके भी अगर सिर्फ एक सिनेमा हॉल में रिलीज हो करके कोई फिल्म एक अच्छा काम कर सकती है, तो एक्चुअली में इट्स अ लेसन कि अगर कंटेंट अच्छा है तो लोगों तक पहुंचेगा और हिट होगा। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची पर उसको साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijituraj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस जमाने की बहुत फेमस बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस होती थी अपर्णा सेन. उन्होंने इस फिल्म के लिए इतने सारे पैसे मांग लिए और फिल्म के एक्टर को भी चेंज करने की डिमांड मांग ली कि इतनी बेहतरीन फिल्म से उनको अलविदा कह दिया गया. पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म रजनीगंधा टुडे. 1975 में ये फिल्म रिलीज हुई. फिल्म फेयर अवार्ड मिला इस फिल्म को इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फिल्म. और सोचो 1975 एक ऐसा साल था जिसमें शोले भी रिलीज हुई थी और बहुत सारी आइकॉनिक फिल्में रिलीज हुई थी. रजनीगंधा एक ऐसी फिल्म थी जिसे डेब्यू किया था अमोल पालेकर ने और विद्या सिन्हा ने. ये दोनों ही न्यू फेसेस थे. और शशि कपूर साहब ने ना मूवी के डायरेक्टर बासु चैटर्जी से कहा था कि तुम्हारी विनिंग स्टोरी है, तुम्हारी कहानी में बहुत दम है, इसको डेफिनेटली अवार्ड मिलेगा, लोगों को बहुत पसंद आएगी, बशर्ते तुम एक नया चेहरा लेकर के आओ. बासु चैटर्जी ने अपना हीरो अमोल पालेकर ढूंढ लिया था. फिर वो गए बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस अपर्णा सेन के पास. अपर्णा सेन ने कहा कि भाई मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए और मुझे ये अमोल पालेकर के साथ काम नहीं करना, एक एस्टैब्लिश एक्टर लेके आओ. बासु चैटर्जी ने उनको टाटा बाय बाय कह दिया एंड देन केम विद्या सिन्हा. पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ. रजनीगंधा के गाने भी है मेरे पास, एक एक करके सुनाऊंगी. सो कम राइट बैक.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: सम कहाँ, तुम कहाँ, हम कहाँ, ताल कहाँ, सम कहाँ, तुम कहाँ, हम कहाँ, तेरे कर तुम, नाल कर तुम, तेरे कर तुम, नाल कर तुम, हम तुम, नाता हाथ, हिपाता, लता हाथ, पता पाथ, मेरा कस करामत,
1: ताते खेता, ताते खेता, ताते खेता, थैया थैया थै, टकटर दुम, टकटन्या,
0: सपने में देखा सपना, ओ सपने में देखा सपना।
2: ऋषिकेश दा की ना दो खास बात थी, एक तो वो लोकेशन के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करते थे अपनी फिल्मों में और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते थे। ये जो गाना आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म गोलमाल। आपको पता है ये फिल्म सुपर डुपर हिट थी जिसके सीक्वेंस अभी तक हम बनते देखते हैं। वेल, ये फिल्म 40 दिन में बन करके खत्म हो गई थी और वो भी उनके खुद के बंगलों पे बैंड्रा में। बिकॉज ही थॉट कि भाई लोकेशन से ज्यादा वो ना स्क्रिप्ट में बिलीव करते थे। कहानी दमदार होनी चाहिए और कहानी आम आदमी की होनी चाहिए। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया के साथ चलते रहेंगे। सो कम राइट बैक।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कान पकड़ करके शशि कपूर ऋषि कपूर को इस पिक्चर के सेट पे ले आए थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये गाना है फ्रॉम द फिल्म कभी कभी। मूवी को बनाने वाले यश चोपड़ा साहब, और यश साहब ने ये जो विकी का रोल था ना इस फिल्म में, ये ऋषि कपूर को सोच के ही बनाया था। अब ऋषि कपूर वॉजेंट वेरी एक्साइटेड टू डू दिस फिल्म, तो उन्होंने ना मना कर दिया था। जब ये बात यश जी ने शेयर की उनके अंकल शशि कपूर से, तो शशि कपूर ने कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ऋषि को कौन पकड़ के सेट पे ले आऊंगा। हुआ भी यही वो जबरदस्ती लेकर के आगे ऋषि कपूर को। अब ऋषि जी ने कहा कि उनकी तो दो दिन के अंदर फ्लाइट है टू न्यूयॉर्क, जहां वो दो महीने के लिए छुट्टी मनाने जा रहे थे। तो आपको पता है क्या किया यश चोपड़ा जी ने, उन्होंने उनको डायरेक्टली सेट पे ले गए और ऋषि कपूर से डेढ़ दिन के अंदर हजारों शॉट ले लिए गए, जो कि इस मूवी में यूज हुए फिर। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, उस जमाने की बातें चलती रहेंगी। सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mirchi New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

किसी को भी दरवाजा नॉक करने तक की परमिशन नहीं थी। पुरानी जीन्स पे आबू श्रेया के साथ ये जो गाना आपने सुना, ये है फ्रॉम द फिल्म अमर प्रेम, जिसके गाने आज भी सुपर डुपर हिट हैं, और इनका म्यूजिक बनाने वाले आर डी बर्मन साहब। सो पंचम दा को जब इस फिल्म अमर प्रेम की ब्रीफ मिली तो उन्हें समझ में आया कि ये फिल्म सिर्फ एक एक नॉर्मल सी रोमांटिक स्टोरी नहीं है, इट्स एन इंटेंस रोमांटिक इमोशनल स्टोरी। तो इनके गानों के लिए, इसके म्यूजिक के लिए, कहते हैं कि पंचम दास सुबह 9 बजे अपने कमरे में, अपने म्यूजिक रूम में चले जाते थे, दरवाज़ा लॉक कर लेते थे, और बीच में जब उनको खाना खाना होता था, भूख लगती थी, तो कोई भी दरवाज़ा खटखटा नहीं सकता था। उनकी थाली उनके डोर के बाहर रख दी जाती थी कि जब जब उन्हें भूख लगेगी वो दरवाज़ा खोलेंगे और अपना खाना अंदर ले लेंगे। रात के 9 बजे तक ये काम होता था। He used to go inside at 9 a.m. and used to work till 9 p.m. locked in a room. और ऐसा कई दिनों तक चला जब तक इस फिल्म के म्यूजिक इतना खूबसूरत निकल के नहीं आया। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर मिर्ची साथ जीतू राज मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijituraj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज only on Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सनी देओल पे पिक्चराइज्ड है ये गाना, जो कि है फ्रॉम द फिल्म अर्जुन। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे राहुल रविल, और इस फिल्म के डायलॉग, स्क्रीन प्ले, स्टोरी सब लिखने वाले थे वन एंड ओनली जावेद अख्तर साहब। लेकिन आपको पता है कि जावेद साहब को इस फिल्म का आइडिया कहाँ से आया? वो और राहुल रविल एक्चुअली में पार्टी कर रहे थे, पार्टी नहीं, पिकनिक कर रहे थे लोनावला में, और वहाँ पे एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। जब जावेद साहब ने वो पढ़ना शुरू किया तो उस जमाने के मुंबई के एक गैंगस्टर की कहानी निकली थी। बस जावेद साहब को कंटेंट मिल गया और उन्होंने ये फिल्म बना दी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी फिल्म में सिर्फ मेल सिंगर्स थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और ये जो गाना भी आपने सुना है फ्रॉम द फिल्म याराना। एंड फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि फिल्म के सारे गाने जो हैं वो सिर्फ मेल प्लेबैक सिंगर्स ने गाए। एक गाना गाया था इस फिल्म का रफी साहब ने, और बाकी जो पांच गाने थे, बिकॉज देयर वर सिक्स सॉन्ग्स, वो किशोर दा ने गाए। ऐसा जनरली होता नहीं था तब, क्योंकि रोमांटिक गाने होते थे। लता जी का गाना तो डेफिनेटली फिल्मों में डाला जाता था, इफ नॉट लता जी तो आशा ताई का गाना होता था। एंड दोनों का मतलब डुएट गाने तो डेफिनेटली होते थे, बट याराना इस फिल्म में एक भी डुएट गाना नहीं था, एक भी फीमेल प्लेबैक सिंगर नहीं थी। पुरानी जीन्स पे कुछ ऐसे ही अनकही बातें जो आपने शायद कहीं नहीं पढ़ी, कहीं नहीं सुनी, वो ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ मैं। सो बस कहीं भी मत जाना, मेरा नाम है श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राजेंद्र कुमार ने फिर कभी भी अपने सबसे खास दोस्त मनोज कुमार से बात नहीं की। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना भी आपने सुना ये है फ्रॉम द फिल्म लव स्टोरी। एक ऐसी फिल्म जिसके रिलीज होने के बाद रातों रात बड़े स्टार बन गए थे कुमार गौरव एंड विजेता पंडित, दोनों के डेब्यू फिल्म थी ये। ये फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे राहुल रविल और इस पे पैसा यानी इसके प्रोड्यूसर थे कुमार गौरव के फादर राजेंद्र कुमार। अब हुआ ये कि राजेंद्र कुमार चाहते थे कि उनके बेटे की पहली फिल्म है और वो मनोज कुमार डायरेक्ट करें जो उनके बेहद करीबी दोस्त थे, लेकिन मनोज कुमार ने बहुत पोलाइटली उनको रिफ्यूज कर दिया ये कहते हुए कि अब उनका खुद का होम प्रोडक्शन है और वो अपनी फिल्म क्रांति में बिजी हैं। ये बात राजेंद्र कुमार को बेहद दिल पे चुभी क्योंकि मनोज कुमार को उनकी पहली फिल्म दिलवाने वाले राजेंद्र कुमार थे एंड हिज फर्स्ट फिल्म वॉज हरियाली और रास्ता। सो ही थॉट कि जब मैंने उनको तब पहली फिल्म दिलाई थी तो मेरे बेटे की पहली फिल्म डायरेक्ट करेंगे मनोज कुमार, विच ही डिड नॉट। और इसीलिए दोनों ने इस इंसिडेंट के बाद कभी एक दूसरे से बात नहीं करी। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पहले 1 लाख मांगे तो यश चोपड़ा साहब ना जोर से हंस दिए उनके मुंह पे, उसके बाद 3 लाख देने पड़े। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। सलीम जावेद साहब की फिल्म जब उन्होंने लिखी जंजीर, बच्चन साहब के साथ जब रिलीज हुई तो सुपर डुपर मैसिव हिट हुई। अब ना सलीम जावेद साहब स्टैब्लिश हो गए थे एज फिनोमिनल राइटर्स कि ये दोनों जब कहानी लिखते हैं तो मूवी सुपर हिट हो जाती है। लेकिन अब जो मैं बात बता रही हूँ वो जंजीर फिल्म के रिलीज होने के पहले की है। स्क्रिप्ट का नाम यानी फिल्म का नाम होता है दीवार, और ये जो दीवार होती है ना इसको लेकर के पहुंचते हैं सलीम जावेद यश चोपड़ा के घर और उनसे कहते हैं कि ये स्क्रिप्ट हमने आपके लिए बनाई है, ये सक्सेसफुल मूवी है, ब्लॉकबस्टर है, मेजर हिट है। तो भाई सलीम जावेद साहब ने इस स्क्रिप्ट के लिए 1 लाख रुपए मांगे। यश चोपड़ा साहब उनके मुंह पे हंस दिए और कहने लगे क्या बात कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या तुम दोनों, क्योंकि ये अमाउंट राइटर्स के लिए किसी ने कभी तब सुना ही नहीं था। सलीम जावेद साहब वापस आ गए, ये स्क्रिप्ट लेकर के वो किसी और के पास नहीं गए, अपने ड्रॉअर में रख दिया और जंजीर के रिलीज होने का वेट किया। जंजीर के रिलीज होते ही जो फैंडम देखा गया फॉर द फिल्म फॉर बच्चन साहब, उसके 2 दिन के बाद यही स्क्रिप्ट लेकर के सलीम जावेद पहुंचे फिर से यश चोपड़ा के पास और कहा इस बार 3 लाख फॉर दीवार। और यश साहब ने दिए भी 3 लाख रुपीज। वेल, इसी फिल्म दीवार का गाना कमिंग ऑलराइट नेक्स्ट। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची पर उसको साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रोल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ चले जाने का टाइम हो गया है, सो लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट सिर्फ गाना नहीं है, जीवन की सच्चाई है, जो बस अगर लाइफ में एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो ना, लाइफ इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी सिंपल। और वो क्या है?
1: छोटे से ही हम भी बड़े दिल वाले।
0: एब्सोल्युटली, जीवन के दिन छोटे ही सही, हम भी बड़े दिल वाले। लता जी के आवाज में गाना कमिंग ऑन राइट नेक्स्ट। मैं जाती हूँ, कल मिलने फिर से आती हूँ। इन केस यू वांट टू रीच आउट टू मी, फेसबुक और इंस्टा पे माय हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव। दैट्स आरजे SHREYA विद लव। बाय।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: किया।
1: कभी किसी को दे-

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot
1: and अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। Now for people जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्ची जीतू राज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रोल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अटैचमेंट छोड़ना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है, चलिए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कुछ दिनों पहले ना मैं कबीर के दोहे फिर से पढ़ रहा था, बड़ा मजा आया। तो एक बड़ी प्यारी रचनाएं लाइनें उनकी जो मैंने पढ़ी कि माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो बेसिकली हमारे जो डिजायर्स वो कभी खत्म नहीं होते। और नवरात्रि के सिलसिले में जब हम बात कर रहे थे, आपने जो कहा था कि अष्टभुजाओं के अलग अलग पावर्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एक मुझे लगा कि एक होता है पावर टू डिटैच, जिसके बारे में आप मुझे बता रही थी, जो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो डिजायर्स होते हैं, जो वॉन्ट्स होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। तो ये इतना मुश्किल क्यों होता है अटैचमेंट को छोड़ना?
4: डिजायर्स अलग हैं, अटैचमेंट अलग है। डिजायर्स भी आप कह रहे हैं खत्म नहीं होते, उसका कारण ये है कि जो भी डिजायर होती है वो कुछ ना कुछ हमें प्राप्ति करा रही होती है।
3: जी,
4: कुछ तो मिल रहा होता है ना।
3: हाँ।
4: मन को भोगों की आदत हो गई है।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: तो मन को जो खुशी चाहिए या प्यार चाहिए उसको कहीं से मिल रहा है।
3: जी।
4: कोई व्यक्ति है, कोई वैभव है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है। हाँ। तो जहाँ से भी मिल रहा है, भले टेम्पररी भी है।
3: हाँ।
4: लेकिन मिल तो रहा है ना।
3: बिल्कुल।
4: तो जब मिल रहा होता है तो उसकी जो इच्छा है वो और बढ़ जाती है।
3: हाँ, कि और मिले, और चाहिए,
4: और चाहिए। क्योंकि जब वो मिलता है तभी उस चीज की आपको तृप्ति होती है, थोड़े समय की होती है। फिर वो चीज डिजायर्स के साथ क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है।
3: सही बात है।
4: कोई भी चीज है, चाहे वो वस्तु है, पोजीशन है।
3: हाँ।
4: आज आपका पे पैकेज भी है।
3: हाँ, बिल्कुल। ज्यादा ही चाहिए, कम किसको चाहिए।
4: कमी नहीं होगी आपके पास।
3: हाँ, लेकिन
4: किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, पर वो खुशी तभी देगा जब उसके अंदर कुछ बढ़ेगा, कुछ इंक्रीमेंट होगा, और फिर इन चीजों का एडिक्शन होने लग जाता है। तो इसीलिए मन, जो आपने कहा कबीर ने बहुत अच्छी बात कही कि मन मन को मन मना भव, मतलब मन को जब हम परमात्मा में लगा करके अपने को उससे भरते हैं,
3: अच्छा,
4: तो ही हम इच्छाओं से परे जा सकते।
3: एक बार फिर से कहिए, मन को
4: मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ।
3: अच्छा, मन को मन मना भव, मन को इच्छा में नहीं,
4: मेरे में लगाओ,
3: मेरे में लगाओ।
4: क्योंकि
3: परमात्मा में लगाओ,
4: आपको उस चीज की प्राप्ति होगी। इच्छा और आवश्यकता में फर्क होती है।
3: जी, बिल्कुल। नीड्स एंड वांट्स,
4: नीड्स रहेंगे, लेकिन नीड्स को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, नीड्स आपकी पूरी हो सकती है, नीड्स आपके साल की आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। इच्छाएं जो है वो कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि आप उससे मन की खुशी ले रहे हैं।
3: जी।
4: तो जब तक आप मन को उस परमात्मा में नहीं लगाते, कोई भी किसी भी एज में जब तक आप नहीं लगाते, तब तक आपको वो अतीन्द्रिय सुख की, प्यार की, खुशी की आपको मिलता ही नहीं है कहीं से।
3: बिल्कुल।
4: जब आपको मिलेगा नहीं तो आप कहाँ ढूंढेंगे, भोगों में ही ढूंढेंगे।
3: सही बात है।
4: चाहे वो खाने में हो, पहनने में हो, घूमने में हो, काम में हो, पोजीशन में हो, हर्जा उनमें से किसी भी चीज में नहीं है।
3: जी।
4: कोई पोजीशन गलत नहीं है।
3: हाँ।
4: लेकिन वो पोजीशन है देने के लिए।
3: हाँ।
4: और अगर आप खाली होंगे तो वही पोजीशन हो जाएगी
3: लेने के
4: लिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: इमोशन को संभालना खुद को संभालना होता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: आपने मुझे बहुत खूबसूरत किशोर कुमार का गाया हुआ एक गीत इसके बारे में मुझे याद दिला दी। उसमें दो लाइनें हैं और दोनों लाइनें बहुत खूबसूरत है। अकेले में देखें तो अलग लगती हैं और साथ में देखें तो अलग ही मीनिंग निकलता है। तो पहली लाइन है कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। तो इसमें लगता है कि यार हमेशा चाह बढ़ती रहती है, और जो आप कह रही हैं कि आदत लग जाती है, और चाहिए और चाहिए। लेकिन दूसरी लाइन उसमें जो इसको बिल्कुल कंप्लीट करती है, वो कहते हैं कि जिंदगी फिर भी यह खूबसूरत है, तो जितना उतने में खुश हैं हम। बहुत खूबसूरत बात है,
4: ये वही कर सकता है जो अंदर से संतुष्ट है।
3: बिल्कुल,
4: कंटेंटमेंट बहुत जरूरी है। ये भी एक सफलता की निशानी होती है। सफलता से फाइनेंशियल सफलता नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी को देखते हैं, भले थोड़ा है लेकिन थोड़े में भी अगर संतुष्ट है, तो ये भी एक निशानी है कि वो सफल व्यक्ति है।
3: हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डिटैचमेंट का असली मतलब क्या होता है, चलिए इस पर बात करते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो मुझे एक चीज बताइए कि चीजों से, व्यक्तियों से, अनुभवों से हम अपने आप को अटैच कर लेते हैं। डिटैच करना आप कह रहे हैं कि वो आदत सी बन जाती है, इसलिए मुश्किल होता है। अब इससे डिटैच कैसे हूँ?
4: डिजायर अलग चीज है, डिटैचमेंट अलग चीज है। अभी हमने जो बात करी वो डिजायर की थी।
3: जी।
4: डिटैचमेंट को हम कहते हैं न्यारा होना।
3: जी।
4: आप मन से किसी चीज से न्यारा होते हैं कि वो चीज आपको ओन नहीं कर सके।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: अभी अटैचमेंट और डिटैचमेंट, अटैचमेंट है चाहे वो व्यक्ति से है चाहे वो वस्तु से है, उसकी निशानी है कि जब वो हिलेगा तो आप भी हिलेगा,
3: आप भी हिलोगे। हाँ,
4: ये पहला साइन है।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: अटैचमेंट का साइन क्या है? जैसे ये दो हाथ अटैच है।
3: हाँ,
4: अब ये हिलेगा तो इसका इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा।
3: तो
4: ट्रेन है।
3: हाँ,
4: इंजन से सारे डब्बे अटैच है।
3: बिल्कुल।
4: इंजन अगर पटरी से गिरेगा तो डब्बों के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा।
3: बिल्कुल।
4: तो अटैचमेंट की साइन है कि अगर आप किसी व्यक्ति से, हमें लगता है प्यार है, प्यार अलग चीज होती है, अटैचमेंट अलग चीज होती है। प्यार लव है, अटैचमेंट मोह है। मोह में दुख होता है।
3: अच्छा।
4: प्यार में दुख नहीं, अनकंडीशनल वो चीज होती है।
3: हम तो हमेशा समझते थे प्यार और मोह एक ही चीज है।
4: स्नेह अलग है,
3: प्यार अलग है और मोह अलग है।
4: अटैचमेंट में तो क्या होता है, आपके दुख में मेरा दुख, आपके सुख में मेरा सुख।
3: क्या बात है, बहुत बड़ा।
4: मैंने अगर चाहे पेरेंट चाइल्ड भी है, वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ, वो दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ, उसको कहते हैं अटैचमेंट। लेकिन स्नेह होता है कि आप भले दुख में हैं, समझो आज आप चिंता है, आप परेशान है, लेकिन उस चीज का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर ना पड़े
3: तो आप उसकी मदद कर पाएंगे।
4: आप उसकी मदद कर पाएंगे, आप उसको स्नेह दे पाएंगे, आप उसको सहयोग दे पाएंगे, उसको भी ऊपर उठा पाएंगे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जिंदगी में डिटैचमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए इसकी वजह समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो इसमें जो मूल बात ये आती है कि डिटैचमेंट जरूरी क्यों है,
4: डिटैचमेंट का मतलब क्या है। डिटैचमेंट ना हम व्यक्ति से हो रहे हैं ना हम गोल से हो रहे हैं, हम तो डिटैचमेंट, जैसे अगर आप किसी स्पोर्ट की बात कर रहे हैं
3: जी,
4: तो उसमें स्पोर्ट से थोड़ी डिटैच होना होता है।
3: अच्छा,
4: लेकिन स्पोर्ट है
3: हाँ,
4: तो उसमें हार जीत तो होगी,
3: उस इमोशन से डिटैच होना है।
4: अब हार जीत के समय पर हार हुई तो आप कई बार आजकल देखते हैं वो कभी कभी दिखाएंगे कि वहीं बैट पे तोड़ दिया या टेनिस रैकेट है तो हाँ, उसको वहीं पर ही कर रहे हैं, तो दिखाते कितना वो इमोशन, पर वो एक अच्छा एग्जांपल तो सेट नहीं कर रहा।
3: सही बात है।
4: और ऐसे ही क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है बना हाँ,
3: आपको लोग देखते हैं।
4: एक गेम है, गेम में आपको पता भी है क्योंकि हारेगा एक जीतेगा। अगर आज एक गेम को आप स्टेबिलिटी से नहीं ले पाते उस हार जीत को, तो फिर जीवन में कोई और विघ्न आएगा तो क्या होगा। सो डिटैचमेंट इज कि चाहे वो लॉस था चाहे वो विन था, लेकिन आप स्टेबल थे। लॉस था तो आप बहुत ज्यादा उदास हो गए, अग्रेसिव हो गए, वहीं पर ही अपने रैकेट को बीट करने लगे, और जब आप जीते तो आप इतने ज्यादा एक्स्टैटिक थे। वो जो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है उसके जगह जो हम कहते हैं स्टेबिलिटी, मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत सर्दी गर्मी सब में समानता,
3: क्या बात,
4: ये एक निशानी होती है, एक योगी की निशानी होती है। सो डिटैचमेंट इज नॉट फ्रॉम द गोल, इट्स नॉट फ्रॉम द पर्सन, इट्स नॉट फ्रॉम द स्पोर्ट, इट इज ओनली फ्रॉम दैट इमोशन नेगेटिविटी।
3: बहुत खूबसूरत है, और मुझे फिर जैसा कि मैं अक्सर करता हूँ किशोर कुमार का गाया हुआ गीत मुझे याद आ गया, जिसमें वो कहते हैं कि जिंदगी की यही रीत है, कभी हार है तो कभी जीत है, थोड़े आंसू हैं थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है हंसी। बिल्कुल आप वही बात कर रही हैं कि डिटैचमेंट इज नॉट टुवर्ड्स द गेम, इट्स थ्रू द इमोशन। वो जो खुशी है हार है हमको ये समझना पड़ेगा कि ये तो जिंदगी में चलता रहेगा, अगर आप उससे थोड़ा डिटैच हो जाएं तो शायद आपकी जो आपका जो सफर है वो बेहतर होगा।
4: कहते हैं ये लाइन हमेशा याद रखनी चाहिए, ये वक्त भी बीत जाएगा
3: जी।
4: तो अगर आप दुखी हैं और आप ये लाइन करते हैं कि ये वक्त भी बीत जाएगा, तो आपको हिम्मत देता है। और अगर आप बहुत खुश हैं तो भी अगर आप कहते हैं कि ये वक्त बीत जाएगा, तो वो आपको ग्राउंडेड रखता है, आपको पता है कि कोई भी घड़ी सदा नहीं रहती।
3: सही बात, बहुत बहुत खूबसूरत।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: प्यार और एक्सपेक्टेशन के बीच का कनेक्शन क्या है? चलिए इस सच को समझने की कोशिश करते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, ये आप कह रहे हैं कि रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल लव होना चाहिए। सुनने में अच्छा भी लगता है और शायद यही सही तरीका है, लेकिन जहाँ पर प्यार है वहाँ एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है आ ही जाता है।
4: सी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये समझा है कि एक्सपेक्टेशन अगर आप रखते हैं तो ये एक हर्ट का दरवाजा खोलता है, दुख का दरवाजा खोलता है। और हम कई बार कहते हैं ये नेचुरल है, ये पर इतना नेचुरल नहीं है। आप देखें, अगर समझो आज आपका एक मित्र है, आपका दोस्त है, वो बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, आप सारी रात उसके साथ वहां पर रुकते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो आप ये इसलिए करते हैं क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगता है। आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो भी ऐसा करेगा, लेकिन बस आप इतना सा ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि आप जब इतने बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उसको कम से कम एक फोन तो करना चाहिए।
3: हाँ बिल्कुल, आ नहीं पाया, फोन
4: चलो
3: तो कर
4: आ नहीं पाया, मेरे साथ सारी रात टाइम नहीं बिता पाया, मैं तो रातों रात उसके साथ हॉस्पिटल में रुका था, पर कम से कम एक फोन तो उसका
3: आता है, ये दिमाग में हमेशा ख्याल आता है।
4: अच्छा, अभी आप वहाँ पर देख लें, समझे कोई बेगर है, भिखारी है, आप रोज उसको कुछ ना कुछ देख करके वहां से निकलते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि आप बैंकरप्ट हो जाते हैं, आपका दिवाला निकल जाता है, फिर आपको संकल्प आता है कि उसको आज मेरे बुरे वक्त में मुझे कुछ तो देना चाहिए।
3: नहीं, ऐसा तो नहीं आता।
4: देखिए, मना है तो ये सारा मन का खेल ना, आप उसको भी रोज दे रहे थे, लेकिन आप हमेशा कह रहे थे कि जो हमें ये सिखाया जाता है ना, कर्म कर, नेकी कर और दरिया में डाल।
3: जी बिल्कुल,
4: कर्म कर और फल की इच्छा नहीं कर, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। हमने जो किया किसी के लिए भी किया, और ये देखो आपको उस भिखारी से नहीं आई, लेकिन अपनों से आ जाती।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: डिटैचमेंट क्या इमोशंस को सप्रेस करना होता है या उन्हें समझकर रिलीज करना? आइए क्लैरिटी लाते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ना डिटैचमेंट को सप्रेशन ऑफ इमोशन भी करते हैं। वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेते हैं और उनको लगता है भैया मुझे तो इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बात ही नहीं करनी है। वो विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को इतना सप्रेस कर रहे हैं कि उनको लगता है वो डिटैच हो गए। तो ये भी, इसका डिटैचमेंट का मतलब ये भी नहीं है।
4: ये सब तो गलत ही है। ये जब हम कमजोर होते हैं या हमें ठीक से बात करना नहीं आता या हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता तो हम भागने की कोशिश करते हैं। भागना कहते हैं इसको। आप अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हो, परिवार से भाग रहे हो, चैलेंज से भाग रहे हो। कई लोग भागते भी हैं, पर भाग कर कहाँ जाएंगे? आप अपने मन से तो भाग नहीं सकते।
3: सही बात है, नहीं भाग सकते।
4: आप भाग ही नहीं सकते, और भागेंगे भी तो देखो हिसाब किताब ऐसा है किसी न किसी रूप में लौट करके आ जाता है।
3: 100%
4: डिटैचमेंट पावर है। डिटैचमेंट पावर है और किनारा करना वीकनेस है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Morning, only on Mirchi. It's hot.
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
3: एक्वायर्ड पोजीशन हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है या फिर और ज्यादा अटैच्ड? चलिए इस एंगल को समझते हैं.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
5: एक बार जावेद अख्तर ने किसी इंटरव्यू में कहा था या उनकी किताब में लिखा हुआ है कि आज जो वो बने हैं वो अपने स्ट्रगल्स के कारण बने हैं. एक समय ऐसा था कि उनके पास न रहने के पैसे थे न खाने के पैसे थे, और वो बहुत अपने जो अब्बू हैं उनके साथ उनके बहुत डिफरेंसेस रहते थे, तो उनसे वो पैसा लेना सही नहीं समझते थे. तो वो जो स्ट्रगल का पीरियड रहा उस कारण से उन्होंने बहुत सीख पाई, और उसके कारण आज वो जब वो अपनी जिंदगी में पीछे देखते हैं उनको लगता है कि भाई जो मैं आज बना हूँ उसी कारण बना हूँ, और देयरफॉर मैंने जिंदगी में बहुत सारे लेसन्स लिए हैं. अब कहीं ना कहीं जब मुझे इतनी प्रॉब्लम स्ट्रगल के बाद ये सक्सेस मिली है, और आपको पता है मैंने वो दिन भी देखे हैं, तो ये अटैचमेंट होना तो बिकॉज इसके लिए मैंने स्ट्रगल किया, इस सक्सेस के लिए मैंने काम किया और आज मुझे सक्सेस मिला. जब मुझे सक्सेस मिल जाए तो मैं बोलूं कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ये कैसे हो सकता है? जब मैंने स्ट्रगल किया है मुझे वो मिला है जिसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था, हाउ इज इट पॉसिबल टू डिटैच योरसेल्फ?
6: हम कहाँ कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए? कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं, हमने इस चीज को अक्वायर किया, अपनी मेहनत से अक्वायर किया और उसका हम सुख भी ले रहे हैं. पर सत्य तो ये भी है ना कि इसमें से कुछ हमारे से छूट भी सकता है
5: और चला भी जाएगा.
6: जा सकता है कि नहीं, आज मैंने बहुत मेहनत करके कोई पोजीशन प्राप्त करी, मैं उसका सुख ले रहा हूँ. आज मैंने बहुत मेहनत करके धन कमाया, मैं उसका सुख ले रहा हूँ. पर अगर मैं सोचूं कि ये मेरा है और ये कभी मेरे से छूट ही नहीं सकता, तो आप सुख ही नहीं ले पाएंगे, आप तो डर में रहेंगे
5: कि कल चला जाएगा तब मैं क्या करूँगा,
6: कोई छीन ना ले, कोई छूट ना जाए.
5: तो आज है तो उसको एंजॉय करो, और जब नहीं रहेगा तब टेंशन नहीं लेने का.
6: अगर सत्य को आप समझे तो यही है कि आज अगर कोई भी चीज, व्यक्ति है, वस्तु है, वैभव है, पोजीशन है, आप बताएं कौन सी अविनाशी है?
5: कुछ भी नहीं.
6: क्या अविनाशी? तो जो है वो है आपके संस्कार और आपकी कला. आज इसमें से कुछ चला भी जाएगा पर आपको पता है आपने हार्डवर्क से कमाया था, वापस हार्डवर्क से कमा सकते हैं, तो आप फियरलेस हो जाते हैं. आपको अपने ऊपर विश्वास होता है कि ये मैंने ही कमाया था, मैं वापस कमा सकता हूँ. पर आपने जो कमाया और आप उससे अटैच हो जाएं तो आप तो फियर में रहेंगे कि मेरे से ये चीज छूट ना जाए. हम से मेजोरिटी लोग जीवन फियर में बिताते हैं, और फियर का कारण ये है कि जो कुछ हम अक्वायर करते हैं हम उसको कस के पकड़ लेते हैं और हम सोचते हैं इसमें से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए.
2: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पावर टू डिटैच हमें फुलफिलमेंट की तरफ कैसे ले जाती है, आइए इसे समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो पावर टू डिटैच एक तरह से फुलफिलमेंट की तरफ आगे आपको बढ़ाता है, आपको ये मानना है?
4: पावर टू डिटैच एक ऐसी एक स्थिति है, इसको हम कहेंगे जैसे एक स्थिति होती है ना, एक स्टेज है जिस स्टेज में आपके ऊपर किसी भी नेगेटिव चीज का इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता।
3: तो मैंने ये किया, अब इससे मेरी जिंदगी में क्या क्या होगा?
4: जैसे हमने कहा था कि मान है, अपमान है, निंदा है, स्तुति है, हार है, जीत है, सर्दी है, गर्मी, बीमारी भी है।
3: हाँ।
4: समझो आज आपको बीमारी भी हुई, तो आप अगर डिटैच्ड होते हैं तो आपको पता होता है बीमारी शरीर को ही है, मुझे नहीं हुई। आई एम सेपरेट फ्रॉम माई बॉडी। सो इफ यू आर डिटैच्ड, उसकी जो निशानी है, अंदर में हलचल नहीं है, अंदर में डिस्टर्बेंस नहीं है, एक अंदर में पीस है, दैट इज उसका साइन। पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे, या आपके रिश्ते नहीं है, या बहुत कोल्ड हो गए हैं, वो नहीं है, उसको डिटैचमेंट नहीं कहेंगे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: देखो लाइफ में दो चीजें ना अचानक से आ जाती है, अगला मंडे और पेरेंट्स के अनवांटेड सवाल। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही थी मिर्ची मॉर्निंग्स। व्हेदर यू ड्राइविंग टू वर्क, ड्रॉपिंग द किड्स ऑफ टू स्कूल, रशिंग टू कैच दैट ट्रेन, या फिर सिटिंग इन योर कार प्रिटेंडिंग यू रीच द ऑफिस व्हाइल एक्चुअली फिनिशिंग योर चाय। Yeah, I see you and I'm going to be with you without any judgment for next few hours. Lekin guess what, your morning just got a whole lot more interesting because Mirchi Mornings officially on ho chuka hai. Main hu Prisala tumhare saath, tumhari partner in crime, traffic and gossip. Lekin crime mat karna koi bhi, theek hai? Aaj we've got music, masti desi videsi vibes, duniya bhar ki khabrein, lot of Bollywood ka tadka and a lot of Mirchi dar bangers just for you only on Mirchi Mornings. And I've got a contest for you as well. Uske bare mein thodi si der mein bataunga, लेकिन अभी फिलहाल मिर्चीदार गाने चलाऊंगी तुम्हारे लिए। मुझे फॉलो कर लो जल्दी से इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रेस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot. Mirchi no laka har. Presented by Virani Jewelers.
1: Okay, Mirchi Mornings पर बस रही है सोने की चेन. कैसे? वीरानी जूलर्स प्रेजेंट मिर्ची नौ लग का हार. ये कॉन्टेस्ट चल रहा है. बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं और अभी फिलहाल हमारे साथ लाइन पर अगली कंटेस्टेंट मौजूद है. मैं हूँ प्रिसिला एंड लेट्स सी कौन है हमारे साथ. हेलो.
2: हाय प्रिसिला, कैसी है आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हो?
2: एकदम मस्त. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग.
1: और थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी. एंड कैन वी नो आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम प्रश्मी है.
1: प्रश्मी, व्हाट डज इट मीन?
2: प्रश्मी मीन्स फेरी.
1: फेरी, ओह माय गॉड. दैट्स ब्यूटीफुल.
2: थैंक यू सो मच.
1: एंड कह सकते हैं कि फेरी काफी कुछ माता रानी से मिलती जुलती है. नवरात्रि का त्योहार चल रहा है तो यू प्रीटी मच रिलेटेड टू दैट. ओके
2: जी बिल्कुल. यस यस, एक तो नवरात्रि त्योहार ही ऐसा है जो एकदम फेमिनिज्म, गरबा, एंथुजियाज्म, पॉजिटिव एनर्जी, माता जी, ये सब का कलेक्टिव जो एटमॉस्फियर रहता है इस प्रेस्टीजियस फेस्टिवल में. दिस इज व्हाई दिस इज लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल.
1: एंड आपके लिए क्या सिग्निफिकेंस है नवरात्रि का?
2: मेरे लिए तो नवरात्रि का बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि आई एम समवन हु वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द सिटी ऑफ गरबा, अहमदाबाद, गुजरात.
1: सो मैं तो
2: पैदा ही ऐसे गरबा के वो समय, प्लस मेरा बर्थडे भी सितंबर में ही आता है और तब नवरात्रि भी एग्जैक्टली एक वीक के बाद ही थी. तो फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि माता रानी की कृपा ही है जो मेरे को मेरे फेवरेट फेस्टिवल के टाइम पर और जहाँ जो सिटी और जो फैमिली जो नवरात्रि को इतना मानती है वहाँ पे मुझे बर्थ दिया. और हम बचपन से ही नवरात्रि सेलिब्रेट करते आ रहे.

0: my favorite festival.
1: Oh, all right. So, Rashmi, अब मैं आपसे प्रश्न पूछने वाली हूँ.
0: ठीक है, ठीक है.
1: जो आपको अब उसका आंसर करना है, and that's a beautiful story जो आपने नवरात्रि के बारे में बताया. And I hope आपका luck अभी बहुत काम करे. जल्दी से मुझे बताइए और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम मिलेगा आंसर करने के लिए. तो जल्दी से मुझे ये बताइए कि एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड सॉन्ग है कॉल्ड कजरारे.
0: अच्छा,
1: ये कौन सी फिल्म का गाना है? जल्दी से बताइए.
0: बंटी और बबली.
1: बंटी और बबली इज द करेक्ट आंसर. कांग्रेचुलेशंस.
0: थैंक यू.
1: तो नवरात्रि के इस शुभ अवसर में आप अगले राउंड में पहुंच गए हो. कांग्रेचुलेशंस.
0: थैंक यू सो मच.
1: एंड हैप्पी नवरात्रि टू यू.
0: Happy Navratri to you as well. Thank you so much, Priscilla, for connecting with me today.
2: Mirchi 9 lakh ka haar, presented by Virani Jewelers.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौको ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: रेंट भरते भरते थके हो तो अगला अपडेट तुम्हारे लिए है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: दिस इज जेसन जोशी फ्रॉम एसटी कैपिटल फंडिंग विद टुडेज एसटीसीएफ मॉर्गेज मार्केट अपडेट। रेट्स हैव कूल्ड अ लिटिल बिट एंड द 30 ईयर फिक्स्ड रेट इज डाउन टू 7.125%, बट वी आर नॉट क्वाइट देयर हियर फोक्स। द बिग इवेंट टुडे इज सितंबर्स इन्फ्लेशन रिपोर्ट कमिंग आउट एट 8:30 दिस मॉर्निंग। वॉल स्ट्रीट वांट्स टू सी इन्फ्लेशन कूलिंग, बट ऑयल प्राइसेस अबव $100 अ बैरल आर मेकिंग दैट जॉब अ लॉट हार्डर। If inflation comes in hotter than expected, mortgage rates could rise. If it's cooler than expected, we could continue to see some relief in mortgage rates and expect rates to be in the 6% range. And remember, the Fed doesn't directly set your 30-year fixed rate mortgage, but the bond market does have a big say in that. In a rising interest rate environment, it's important to look for a mortgage advisor who can structure your mortgage according to your needs. And that's where we come in with introductory rates up to 1% below the current market rate. And if you're looking to build your portfolio as an investor, check out our DSCR loans, which offer competitive rates with no personal income verification. For more information on these products, please give me a call directly at 732-429-4050 or visit us at sdcapitalfunding.com. Again, this is Jason Doshi from SD Capital Funding, and welcome home.
1: And there you go, mortgage update on Mirchi Mornings. मेरा नाम है प्रिसिला, सुनते रहो मुझे एंड कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है Mirchi Priz एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। Time for some Mirchi Dar bangers. Stay tuned and stay hot.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन, विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijituraj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
3: शशि वो मैनहट्टन है।
2: मैनहट्टन
4: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
3: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. Time for some weather ka hal chal. Only on Mirchi Mornings with me, Priscilla. Aaj, October 14th, temperatures are climbing from around 63 degrees Fahrenheit this morning to a high of 78 degrees Fahrenheit. Yani ki subah subah halka sa chilly weather rehne wala hai. Afternoon mein aate aate warm ta jayegi aur weather jo hai full on mood swing dikha raha hai aaj ke din. Lekin lunch ke aaspaas umbrella ready rakhna, okay? Because around noon to 2 p.m. there is a 25 to 45% of chance of light rain or drizzle. Koi monsoon ब्लॉकबस्टर नहीं है लेकिन एक छोटा सा रेन का कैमियो है. टोटल रेनफॉल एक्सपेक्टेड इज अराउंड 1 millimeter ओनली. लेट आफ्टरनून तक स्काइज जो है दे शुड टर्न पार्टली सनी अगेन एंड इवनिंग में टेम्परेचर जो है इट विल स्टार्ट ड्रॉपिंग. ओवरनाइट वी आर लुकिंग एट अराउंड 55 डिग्रीज फारेनहाइट, सो कीप दैट लाइट जैकेट हैंडी. ह्यूमिडिटी इज हाई, विंड्स आर कमिंग इन फ्रॉम द वेस्ट एट अराउंड 10 माइल्स पर आवर एंड द यूवी इंडेक्स इज लो एट 2 out of 10. सो आज क्या क्या कैरी करना है? सनग्लासेस, अ कॉम्पैक्ट अम्ब्रेला, some light jacket and साथ साथ में your water bottle to keep yourself hydrated. आज fashion काफी sorted है, prepared हो तुम तो आज जाओ and seize the day. और मिर्ची के अपने साथ चिपकाए रखो, एक contest भी चल रहा है मिर्ची पर, 9 lakh का हार presented by Virani Jewelers. फटाफट से type करो नवरात्रि और अपने पूरे नाम के साथ भेजो 9033647244 पर, क्योंकि नवरात्रि की हर रात को तुम जीत सकते हो एक gold chain. Courtesy Virani Jewelers, जहां पर festive special offers चल रहे हैं 22 carat gold and diamond jewelry पर. Oak Tree Road पर है Virani Jewelers. Check out viranijewelers.com. तुम नवरात्रि टाइप करके अपने पूरे नाम और फोन नंबर के साथ मुझे DM भी कर सकते हो. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, that is MIRCHIPRIS. अभी के लिए मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम है. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. I hope Priscilla tumhare saath mein, and it's time for updates from around the world. सबसे पहले ग्रीस से जर्मनी जा रही एक फ्लाइट ने इमरजेंसी हाईजैकिंग कोड 7500 ट्रांसमिट किया। पायलट रेडियो पर रीचेबल नहीं था तो दो यूरोफाइटर जेट्स ने प्लेन को एस्कॉर्ट किया। थैंकफुली फ्लाइट सेफली लैंड हो गई। एयरलाइन ने बाद में रेडियो ग्लिच को ब्लेम किया है। नंबर टू पर सऊदी अरेबिया से एक मेजर लीगल डेवलपमेंट। श्रीलंकन हिंदू वर्कर अनोजन की ब्लास्फेमी केस में डेथ सेंटेंस को सऊदी अरेबिया की सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया है। केस ऑनलाइन कमेंट्स से जुड़ा था और अब इस लीगल डेवलपमेंट पर सबकी नजर बनी हुई है। एंड लास्टली इंडिया के मेरठ से सौरभ राजपूत मर्डर केस में कोर्ट ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को डेथ सेंटेंस दिया है। सौरभ की 2025 में हत्या हुई थी और उनकी बॉडी को सीमेंट से भरे हुए ब्लू ड्रम में छुपाया गया था। इट्स अ डीपली डिस्टर्बिंग केस एंड अ रिमाइंडर of the devastating consequences of violent crimes. And that's your Mirchi Hour ka 3. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Sunte raho mujhe aur connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris and WhatsApp par mera number hai 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: virtua la burga. Milci, burga. Hello?
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर। आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर। ये दो है, एक लाल है, एक हरा, इसमें से कौन से काटना है
1: सर?
2: एक लाल एक हरा, कौन से काटूं सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? डेढ़ से दो मिनट।
1: भारी सामान
2: तो नहीं है सर।
1: रंग बता।
2: एक लाल एक हरा।
1: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से।
2: एक सेकंड, कैंची ले ली सर, कैंची ले ली। लेकिन सिचुएशन है।
1: आसपास कोई भी नहीं है।
2: आसपास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है।
1: हिल नहीं रहे। एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
2: बिल्कुल
1: फटना नहीं चाहिए। आसपास के लोगों को भी सिक्योर कर दे।
2: ठीक है।
1: हरा काट के देख। धीरे से।
2: वन टू थ्री। कंग्रेचुलेशन।
1: ताली बज रही है? कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर। ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे। ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा है। हाँ। तो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot. Mirchi no laka har. Presented by Virani Jewelers.
1: All right, Mirchi Mornings पर मैं मुरत प्रसला तुम्हारे साथ में हूँ और अभी मेरे साथ में है अगले कंटेस्टेंट फॉर मिर्ची नौ लग का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स, जिसमें नवरात्रि की 9 नाइट्स को गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तुमको जीतने के लिए गोल्ड की चेन. लेट्स सी अगली कंटेस्टेंट जीत पाती है कि नहीं. हेलो,
2: हाय प्रसला.
1: हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: माय नेम इज जिनाल.
1: जिनाल, हाउ आर यू?
2: Yeah, I'm doing well, thank you. How are you? How's your morning?
1: Great. My morning is great. अभी आपसे बात करके और मजा आ रहा है मुझे. And अब हम एक contest साथ में खेलने वाले हैं.
2: Okay.
1: All right. So are you ready?
2: Yeah. Happy Navratri.
1: Happy Navratri to you. Thank you so much. So मेरा सवाल ये है, ध्यान से सुनना और बहुत quickly answer करना, ठीक है?
2: Okay, sure. I'll try.
1: All right. So Bollywood की एक film है मुन्ना भाई MBBS. उसमें एक character है Circuit. ये किस एक्टर ने प्ले किया है? क्विकली.
2: अर्शद द्वारसी.
1: अर्शद द्वारसी इज द करेक्ट आंसर. कांग्रेचुलेशंस. ये
2: या वेरी एक्साइटेड. या आई वाज जस्ट या इट वाज अ इजी वन एंड क्विक वन. आई वाज एबल टू गेट इट, सो दैट वाज गुड.
1: ये थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड यू मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट राउंड. समवन फ्रॉम मिर्ची विल गेट इन टच विद यू.
2: ऑलराइट, थैंक यू सो मच प्रिसिला.
1: ऑलराइट, बाय बाय.
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स.

लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। चिकित्सा

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रोल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्ची जीतू राज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्ची के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: प्रिसिला तुम्हारे साथ में. टाइम फॉर योर गोल रेट अपडेट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स.
1: Rajwas.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,150. $4,150 per ounce के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस कल से थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं. आइए Rajwas.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. Rajwas.com पर 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी विद लाइफ टाइम वारंटीज एंड GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड प्लैटिनम की रिंग में सेट. कुछ भी गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ राज ज्वेल्स की स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन जिसमें बाय नाउ एंड पे लेटर. आइए राज ज्वेल्स का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें और अप्रूव होने पे 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी एंड कलरलेस डायमंड ज्वेलरी घर लेके जाएं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में बिना किसी हिडन फी और इंटरेस्ट के 0% इंटरेस्ट के 9 मंथ्स में पेमेंट करें. आइए Rajwas.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग.
0: दैट वाज योर गोल्ड रेट अपडेट मिर्ची मॉर्निंग्स पर. मेरा नाम है प्रिसिला. मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस MIRCHIBRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033647244. कनेक्ट करो व्हाइल आई प्ले सम मिर्चीदार बैंगर्स फॉर यू. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burka, burka. La virtua la burka. Mirchi, burka.
1: हेलो
2: लैब से बोल रहे हैं आप? लैब
1: हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
2: भाई साहब बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
1: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
2: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना,
1: टाइम खराब कर रहे हैं।
2: नहीं ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा
1: क्या हो गई तो भाई, अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: तो मेरा
1: कहीं और दे देता फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेन करूंगा
1: भाई, जाकर जाकर नहीं कंप्लेन कर दे।
2: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
1: मैं नहीं दे रहा तुझे, जाकर कंप्लेन कर दे,
2: मैं निकलवा लूंगा। और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहां पे भी जाना है।
2: मैं देखता हूं मेरा यूरिन कैसे।
1: हां ठीक है, देख ले देख ले देख ले।
2: ठीक है भाई,
1: हां ठीक है।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और आज राशि जोन 1 एंड 2 एक ही साथ।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी मेष राशि, आज प्लान चेंज होगा लेकिन प्लॉट ट्विस्ट तुम्हारे फेवर में भी जा सकता है, बस शॉपिंग कार्ट को अपना थेरेपिस्ट मत बनाना। लकी कलर कोरल, लकी नंबर 9। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, मनी मैटर्स में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं, नेगोशिएशन में कूल रहना और बजट को इमोशनल डैमेज मत बना देना। लकी कलर इज टील, लकी नंबर इज 24। जेमिनी यानी मिथुन राशि, बोर्डम से बचने के लिए किसी इंटरेस्टिंग पर्सन से बात हो सकती है, वर्क पे गॉसिप से ज्यादा फैक्ट्स पर फोकस करो। लकी कलर लैवेंडर, लकी नंबर 11। कैंसर यानी कर्क राशि, आज रूटीन का बैंड बज सकता है और किसी और की प्रॉब्लम तुम्हारी टू डू लिस्ट में आ सकती है। हेल्पिंग नेचर अच्छा है लेकिन 24 आवर कस्टमर सर्विस नहीं बनना। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 6। लियो यानी कि सिंह राशि, फ्रेंड्स या सोशल प्लान्स में सरप्राइज मिल सकता है, एनर्जी हाई है, सो से यस टू सम फन, बस हर प्लान को खुद से स्पॉन्सर मत करना। लकी कलर इज गोल्ड, लकी नंबर इज 19। वर्गो यानी कन्या राशि, होम या वर्क पे इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़ सकती है, टू डू लिस्ट छोटी करो, बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम नहीं हो। लकी कलर इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 4। लीब्रा यानी तुला राशि, आज कोई फ्रेश आइडिया तुम्हारे पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकता है, सिर्फ लॉजिक नहीं बल्कि गट फीलिंग को भी सुनो और टीम वर्क करो। लकी कलर इज रोज पिंक, लकी नंबर इज 14। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, मनी या शेयर्ड रिसोर्सेज में सरप्राइज आ सकता है लेकिन फाइनेंशियल डिस्कशंस और क्रिएटिविटी तुम्हारे फेवर में जा सकती है। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, आज कॉन्फिडेंस हाई है और चेंज का मूड स्ट्रांग हो सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए डोर ओपन रखो। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 27। केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शन तुम्हारा स्केड्यूल हिला सकता है, टेक अ ब्रेथ, एक्सेप्ट सपोर्ट और सेल्फ केयर को पोस्टपोन मत करो, तुम मशीन नहीं हो इवन इफ योर कैलेंडर things otherwise. Lucky color is charcoal gray, lucky number is 10. Aquarius yani kumbh rashi, midweek energy, financial progress or steady growth ko support kar sakti hai. Smart moves karo, patience rakho, overnight success sirf reels mein hi milta hai. Lucky color electric blue, lucky number 22. Pisces yani mean rashi, work mein progress improve ho sakti hai aur kisi close person ki help bhi karoge. Bas communication clear rakhna kyunki mind reading abhi tak kisi app mein launch nahi hui hai. Lucky color is sea green, lucky number is 3. And that wraps up Rashi Zone 1 and 2. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। Stay tuned and stay hot.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। ये अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर ये फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची फ्रेश माल।
3: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग।

0: Priscilla, it's hot.
1: Hey there, मैं हूँ Priscilla, तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings. And before you rush into your next meeting, grocery run, या फिर another episode of What Should I Cook Today, ये याद रखो, life में surprises full on होने चाहिए. And guess what? हो सकता है surprise surprise में अगले lucky winner तुम बन रहे हो. किसके? Mirchi 9 lakh का हार presented by Virani Jewelers, जिसमें हर रात ऑफ नवरात्रि तुमको मिल रही है एक गोल्ड की चेन. जीतने के लिए क्या करना है? सबसे पहले व्हाट्सएप खोलना है, नवरात्रि टाइप करना है और अपने पूरे नाम के साथ भेजना है 9033 मिर्ची पर. दैट्स 9033647244. या फिर तुम मुझे डीएम कर सकते हो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. दैट इज MIRCHIPRIS. डीएम करो नवरात्रि, अपना पूरा नाम और अपना फोन नंबर एंड ईमेल लिखकर मुझे भेज दो इंस्टाग्राम पर. एंड देन वेट फॉर माय call, I will play a contest with you and you could be the next lucky winner of Mirchi 9 lakh ka haar. So jaldi jaldi apna naam register karo aur sunte raho Mirchi. Abhi ke liye tata bye bye from Priscilla. Milungi kal tumhe same time same place par. Tab tak ke liye tata bye bye. You stay hot and stay tuned.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
3: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,

तो बिल्कुल मधुबाला लग रही हो। सो यस, आज होगी मधुबाला जी की बातें। शुरुआत करेंगे एक ऐसे काम से जो मधुबाला जी को बहुत पसंद था। जैसे ही शूटिंग खत्म होती थी ना, वो ये काम जरूर करती थी, और वो करने से ना उन्हें फ्रीडम महसूस होता था, आजादी लगती थी। क्या था वो काम? अब आपको तो मेरी आदत इतने दिनों से पता ही चल गई, सब कुछ एक बार में नहीं बताती हूँ। सो कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जींस। मैं हूँ श्रेया।

पुरानी जीन्स पर हेलो हेलो, मैं हूँ श्रेया और आज ना पुरानी जीन्स पे उस जमाने के गानों के साथ बात होगी बेगम मुमताज जहान दहलवी की। क्या कह रहे हो, नहीं पहचाने? अरे बिल्कुल जानते हो भाई। चलो एक हिंट देती हूँ कि जब भी कोई बला का खूबसूरत लगता है ना, तो उसको कॉम्प्लीमेंट में कहा जाता है। क्या बात है, आज

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: हेलो।
3: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकत कर रहा है?
2: हेलो
3: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूँ जिन्होंने बताया आपके बारे में। एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब।
2: मैं हेलो?
3: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
2: तुम कौन हो?
3: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आ गए मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
2: क्यों आ जाऊँ?
3: अग्रेशन क्यों आ जाऊँ? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास?
2: तुम्हें बात करनी है?
3: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
2: क्यों? मैं तुम्हारे पास कौन हूँ तुम?
3: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं है अंकल।
2: अरे किसका अंकल?
3: बेटा तुम्हारा अंकल।
2: ये कब आ गया?
3: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
2: हेलो
3: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
2: कौन सा इलाज कराना है? मेरे को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
3: वही लेवल 7।
2: अरे तो तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
3: अग्रेशन।
2: कौन हो तुम मेरे?
3: डिफेंड कर रहा है अपने आपको कि कौन हो तुम मेरे।
2: अबे तू है कौन? तू ये बता।
3: ना ऐसे, ये है 9th level। अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
2: ऐसा है, अपनी गोली डाल दे अपनी गांव में, ठीक है?
3: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
2: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
3: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट्स पटरा।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, वेद इस जमाने की श्रेया। पुरानी जीन्स पे ना आज बात हो रही है मधुबाला जी की। तो मैं बता रही थी कि कैसे उनको एक चीज बेहद पसंद थी, इनफैक्ट वही एक चीज उनको अलाउड भी थी। शूटिंग जब खत्म हो जाती थी तो उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। मधुबाला जी को ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि उन्हें सीधे सेट से घर और घर से सेट जाना है। ऐसे में वो अपना फ्रीडम, अपनी आजादी पता है किस में ढूंढती थी? ड्राइविंग में। उन्हें ड्राइविंग करना बेहद पसंद था, तो हमेशा ड्राइवर को पीछे बैठाती थी और घर का एक लंबा रास्ता लेते हुए वापस जाती थी। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें उनके गानों के साथ, तो बस कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: ये मधुबाला नाम की किताब कैसे खुली?
1: मेरा मतलब है कि मधुबाला जी की जर्नी कैसे शुरू हुई, अभी बताती हूँ। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूँ श्रेया। उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान जी काम करते थे पाकिस्तान में। पेशावर में एक कंपनी थी जिसका नाम था इम्पीरियल टोबैको कंपनी। वहाँ से एक दिन उनकी नौकरी छूट गई, वो अपने पूरे परिवार को लेकर के दिल्ली आ गए। उसके बाद काम ढूंढते ढूंढते मुंबई आए। मुंबई में जब वो काम करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि बॉलीवुड में, यानी तब तो ये इंडियन सिनेमा कहलाया जाता था, वहाँ पर एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत है। अताउल्ला खान जी को ये तो पता था कि उनकी बेबी मुमताज यानी मधुबाला बेहद खूबसूरत है, तो बस वो उनको लेकर के अगले दिन पहुंच गए स्टूडियोज, और वहां पे बेबी मुमताज ने की अपनी पहली मूवी एज चाइल्ड आर्टिस्ट। इस मूवी का नाम था बसंत, वे बैक 1942 में। उसके बाद मधुबाला जी ने कई सारी फिल्मों में काम किया, फुलवारी, पुजारी, राजपुतानी, बहुत सारी। बस यहीं से उनकी जिंदगी में भी ट्विस्ट एंड टर्न भी शुरू हो गए। अभी इनके बारे में बताऊंगी, गानों के उस पार मिलते हैं ना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर मिर्ची साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijituraj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, वो पहली फिल्म कौन सी थी जिससे मधुबाला जी ने अपने करियर की शुरुआत करी एज लीड एक्ट्रेस? बताओ बताओ। पुरानी जीन्स पर, हाय मैं हूँ श्रेया। यू नो व्हाट, सिर्फ 14 साल की थी वो जब लीड एक्ट्रेस बन गई थी। 14 बोले तो मतलब अगर आप स्कूल में हो तो 8th या 9th क्लास में होगे। और उनके ऑपोजिट एक ऐसे एक्टर थे जो इंडस्ट्री में थी तो बहुत टाइम से, लेकिन एक बड़ी फिल्म की तरह उनकी भी ये पहली फिल्म थी। एंड इट वॉज नन अदर देन राज कपूर साहब। मूवी का नाम था नीलकमल, जिसमें दोनों अपने बड़े बड़े सपने लेकर के मैदान में उतरे थे। अभी तो उस जमाने के और भी बहुत सारे किस्से बाकी हैं, तो जल्दी से गाने सुन करके वापस आओ विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: देख रे एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो बात बड़ी सिंपल।

0: हल्ला मचाएंगे हल्ला मचाएंगे बैंड बाजा बाजेगा ठम ठम ठम ए मनु भाई मोटर चली पम पम पम
1: मनु भाई मोटर चली पम पम पम।
2: जब भी कोई बहुत खूबसूरत होता है तो कहते हैं ना आहा क्या मधुबाला लग रही हो। तो आज बस मधुबाला जी की बातें बैक टू बैक श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जींस। हाँ तो मैं बता रही थी कि एज अ लीड लेडी उनको उनका पहला ब्रेक मिला राज कपूर के ऑपोजिट। ये फिल्म थी बहुत पुरानी 1947 की नीलकमल। ये बनाने वाले थे केदार शर्मा साहब। अच्छा बहुत कम लोगों को पता है कि राज कपूर के साथ उन्होंने कई सारी फिल्में की हैं। एन एम केलकर की एक फिल्म आई थी अमर प्रेम। ना ना ना राजेश खन्ना वाली नहीं बल्कि इसमें थे राज कपूर अगेन पेड अप विथ मधुबाला जी। एक फिल्म आई थी मोहन सिन्हा की जिसका नाम था दिल की रानी। इसमें भी राज साहब और मधुबाला जी थे। एक्चुअली में राज कपूर और मधुबाला जी की जो केमिस्ट्री थी इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है बिकॉज काफी पुरानी बात है 1940s और 50s की। आज मैं पता करके आई थी तो आपके साथ शेयर कर ली। आगे कौन कौन से किस्से हैं सब बताऊंगी। वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर। आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर। ये दो है, एक लाल है एक हरा, इसमें से कौन से काटना है
1: सर?
2: एक लाल एक हरा, कौन से काटूं सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? डेढ़ से दो मिनट।
1: पीछे हो गया
2: फिर कटेगा कैसे?
1: भारी सामान
2: तो नहीं है सर।
1: रंग बता।
2: एक लाल एक हरा।
1: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से।
2: एक सेकंड, कैंची ले ली सर, कैंची ले ली। लेकिन सिचुएशन है।
1: आसपास कोई भी नहीं है।
2: आसपास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है।
1: हिल नहीं रहे। एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: फटना नहीं चाहिए। आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है।
2: ठीक है।
1: हरा काट के देख। धीरे से।
2: वन टू थ्री। कंग्रेचुलेशंस।
1: ताली बज रही है? कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर, ये रिबन काटना था ना। मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटें। ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा है।
2: हाँ।
1: तो
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: ये पटरा।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आई वॉन्ट टू लिव द स्टोरी ऑफ मधुबाला,
1: ये लिखने वाले थे कातिजिया अकबर।
0: पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया और आज मधुबाला जी की बातें बैक टू बैक चल रही हैं। सो मैं बता रही थी कि ये जो बुक थी ये मधुबाला की बायोग्राफी थी जो अकबर साहब ने लिखी थी। उसमें ना उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात मेंशन की है। ही सेड कि मधुबाला इतनी खूबसूरत थी, इतनी वाइट थी, उनकी स्किन ऐसे आर पार दिखती थी, एकदम ट्रांसलूसेंट थी कि जब भी वो पान खाती थी, एंड बाय द वे पान खाने की काफी शौकीन थी, तो उनके थ्रोट से, उनके गले से उतरता हुआ पान तक दिखता था। मतलब ये बोलते हुए भी ना मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि काश हमने मधुबाला जी को देखा होता। अच्छा, आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई जरूर उनका जबरदस्त फैन होगा, जैसे मेरी फैमिली में मेरे पापा। और आप क्या, कौन है बताना मुझे। फेसबुक और इंस्टा पे मिल सकते हो आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव, ये है मेरा हैंडल। अभी और भी बातें बाकी, सो वापस आऊं।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

0: Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मधुबाला जी सेट पे हमेशा पंक्चुअल।
1: पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। जितने भी लोगों ने मधुबाला जी के साथ काम किया है और कभी उनके बारे में लिखा है, तो उनकी पंक्चुअलिटी के बारे में जरूर लिखा है। उनकी लार्ज फैमिली को पैसे का सपोर्ट देने वाली इकलौती मधुबाला जी थी, और कहते हैं कि वो मशीन की तरह काम करती थी, अपना ख्याल कम रखती थी, खाना मिस करती थी, और मेट्रो के ओवरक्राउडेड कंपार्टमेंट में मलाट से दादर, दादर से मलाट करती रहती थी, पर कभी भी सेट पे एब्सेंट या लेट नहीं होती थी। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें बैक टू बैक चलेंगी ना श्रेया के साथ, सो कम राइट बैक।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
1: मिर्ची बायोस्कोप साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉकस्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अज्यू बेबी यू रॉकस्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज only on Mirchi, it's hot.
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

दोस्त बनाना अलाउड नहीं था, पार्टीज जाना अलाउड नहीं था, फिल्मों के प्रीमियर अटेंड करना अलाउड नहीं था, फिल्म फेस्टिवल्स जाना अलाउड नहीं था, पिकनिक्स, गेट टुगेदर्स, कहीं पर भी मधुबाला जी नहीं जा सकती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज उन्हीं की बातें चल रही हैं। सो उनके अब्बा यानी अताउल्लाह खान जी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। अगर मधुबाला जी को कुछ अलाउड था तो वो था सेट से घर और घर से सेट। इनफैक्ट वो अपनी ही फिल्मों के प्रीमियर पे नहीं जा सकती थी। कुछ किताबों ने तो ये भी लिखा है कि इन्हीं चीजों से वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हर्ट थी, और क्योंकि वो अपने अब्बा के खिलाफ नहीं जा पाती थी, वो बहुत ही मायूस और सेट पे चुप चुप रहने लगी थी। एक बार तो उन्होंने खुद कहा कि खूबसूरत होना खुशी देता है, लेकिन असली खुशी मिल जाए ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया, वापस आओ और भी बातें करेंगे उनकी।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

देव आनंद और मधुबाला जी ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा किस्सा हुआ जिसने मधुबाला जी की जिंदगी थोड़ी सी बदल दी। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूँ श्रेया। देव साहब और मधुबाला जी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उसी शूट पे कुछ फॉरेन के लोग देव साहब से किसी नए प्रोजेक्ट के लिए मिलने आए। उन लोगों में काफी देर तक बातचीत चलती रही और मधुबाला जी अपनी चेयर पे बैठ करके देख रही थी। जब वो लोग वहाँ से चले गए तो वो देव साहब के पास गई और उनसे पूछा, ये लोग क्या बात कर रहे थे आपसे? अब देव साहब ने या तो जानबूझ करके या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं थे मधुबाला जी को कुछ भी बताने में, तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये कह के वो वहां से चले गए, पर ये बात मधुबाला जी के दिल पे तीर की तरह लगी। घर जाते ही उन्होंने एक काम किया। व्हाट वाज दैट? अभी बताऊंगी। वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो।
4: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
3: हेलो
4: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं सब हो जाएगा सब।
3: मैं
4: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
3: तुम कौन हो?
4: वही चीज मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
3: क्यों आ जाऊं?
4: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
3: तुम्हें बात करनी है?
4: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
3: क्यों मैं तुम्हारे पास? कौन हो तुम?
4: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं है अंकल।
3: अरे किसका अंकल?
4: बेटा तुम्हारा अंकल।
3: ये कब आ गया?
4: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
3: हेलो
4: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
3: कौन सा इलाज कराना है? लेवो को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
4: वही लेवल 7।
3: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
4: अग्रेशन।
3: कौन हो तुम मेरे?
4: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
3: अबे तू है कौन? तू ये बता।
4: ये है 9th लेवल, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
3: ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी गांव में ठीक है।
4: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
3: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
4: ओह माय गॉड लेवल 15 वो सबके
1: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
2: इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया और मधुबाला जी और देव साहब की फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा बता रही थी। इस फिल्म के सेट पे देव साहब से मिलने कुछ फॉरेन के लोग आए, वो कोई नया प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। उनकी ये मीटिंग काफी लंबी चली। मधुबाला जी तब तक देव साहब का वेट कर रही थी और साथ में देख रही थी कि उस एक केबिन में क्या चल रहा है। जैसे ही वो लोग वहां से गए, उन्होंने देव साहब से पूछा क्या बात हो रही थी। देव साहब या तो बहुत जल्दी में थे या फिर उन्हें बताने का मन नहीं था, तो उन्होंने कह दिया तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब ये बात मधुबाला जी को तीर की तरह लगी। उन्हें ये लगा कि क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती इसलिए देव साहब ने उनको इंसल्ट किया। फिर क्या, अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करती थी वो हमेशा। जैसे ही ड्राइव करके घर वापस गई, उन्होंने एक फोन घुमाया। वो फोन था एक इंग्लिश ट्यूटर को। 17 साल की उम्र में उन्होंने फर्राटे से इंग्लिश लिखनी सीखी और इंग्लिश बोलनी सीखी। उन्हीं की ढेर सारी बातें श्रेया के साथ आज ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

only on Radio Mirchi, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

हॉलीवुड के एक बहुत फेमस डायरेक्टर थे फ्रैंक कैप्रा। वो 3 एकेडमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट डायरेक्टर भी जीत चुके थे। एक बार वो मुंबई आए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया को अटेंड करने। वहाँ पे जब उन्होंने मधुबाला जी को देखा तो उनकी खूबसूरती को देख करके वो इतने इम्प्रेस हुए कि बस वो चाहते थे किसी तरह मधुबाला हॉलीवुड आ जाए और वहाँ पे लॉन्च हो जाए। इसके लिए उन्होंने मधुबाला से बहुत मिन्नतें की, लेकिन भाई उनके सारे डिसीजंस तो उनके अब्बा यानी अताउल्लाह खान लेते थे। उनके अब्बा ने साफ मना कर दिया। अब वो मधुबाला को दूसरे शहर तो जाने देते नहीं थे, दूसरे देश कैसे जाने देते। सो फ्रैंक कैप्रा का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। पुरानी जीन्स पर मैं हूं श्रेय।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची पर उसको साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
2: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओ कर्नल सिंह, ओ कर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

पुरानी जीन्स में आभूष रेया के साथ जाने का टाइम, यानी वी गॉट टू हिट द हाईवे। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट उन लोगों के लिए है जो पहली मुलाकात में तो घबराए होते ही हैं, लेकिन जब भी उनसे मिलते हैं तो वो पहली मुलाकात ही लगती है, उतनी ही रोमांटिक लगती है, उतना ही एक्साइटमेंट होता है उनसे मिलने से पहले जैसे कि पहली बार मिल रहे हो। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है तो ये गाना आज उनके लिए और ऑफ कोर्स आपके लिए। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू टुमारो। ख्याल रखो अपना, एंड या इफ यू मिस मी यू नो वेयर टू कैच मी, फेसबुक और इंस्टा, आर जे श्रेया विद लव इज माई हैंडल, दैट्स RJSHREYA विद लव। गुड नाइट।

0: ये नए जमाने के सीरियल्स हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो ड्रामास बाबू मोशाय, जो आज के डेट में एक नया वेव लेकर आ गए हैं इंटरनेट पे। वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हो लाइक डॉली सिंह, जिन्होंने काफी टाइम पहले से इन माइक्रो ड्रामास की शुरुआत की अपने पेज पे, या फिर रिसेंटली कुशा कपिला लेकर आए शीबा चड्ढा के साथ लिखे जो खत तुझे। सो या इन अ वे माइक्रो ड्रामास जो है वो एक साथ फेमिलियर फेसेस को लेकर आ रहे हैं हु बिलोंग टू फिल्म फ्रेटर्निटी, टेलीविजन एंड क्रिएटर्स इकोसिस्टम। एंड दिस डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अ ट्रीट, क्योंकि भाई हर तरफ का टैलेंट जब एक साथ मिल जाए तो क्या ही कमाल होगा, वो तो हम देखते ही आ रहे हैं। और अब जब माइक्रो ड्रामास की बात कर ही रही हूँ तो आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो फेवरेट टीवी सीरियल्स हुआ करते थे ना, वो भी अब 90 सेकंड एपिसोड्स के रूप में देखने को मिल सकते हैं। यस, सीरियल्स लाइक एजेंट राघव, फियर फाइल्स, जय संतोषी माँ, ये सब अडेप्ट हो रहे हैं फॉर वर्टिकल वीडियो जनरेशन बाय रीपैकेजिंग, री एडिटिंग एंड री इंटरप्रेटिंग फेमिलियर स्टोरीज इनटू शॉर्टर मोबाइल फर्स्ट एपिसोड्स, जो डिजाइन होंगे हुक्स, रैपिड ट्विस्ट्स और क्लिफ हैंगर्स के अराउंड। और इससे मेरे दिल का एक हिस्सा काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि बीइंग अ क्रिएटर मुझे ये फील होता है कि यार इतने बड़े लेवल पे ये सारे सीरियल्स बने थे लेकिन वो आज के डेट में आर्काइवल लाइब्रेरीज में यूं ही सड़ रहे थे। बट थैंकफुली किसी के दिमाग में ये आया कि भाई उन सीरियल्स को वापस से रिजुविनेट किया जाए। वैसे फिलहाल आप अगर कोई अच्छा सा माइक्रो ड्रामा फॉलो कर रहे हैं तो उसका सजेशन मुझे जरूर देना। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka. Milci, burka.
1: Hello?
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर. आप जो भी हैं, मुझे टाइम कम है सर. ये दो हैं, एक लाल है, एक हरा. इसमें से कौन से काटना है? एक लाल है, एक हरा है, कौन सा काटूं सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? डेढ़ से दो मिनट. पीछे हो गया सर, पीछे हो गया. फिर कटेगा कैसे?
1: भारी सामान
2: तो नहीं है सर.
1: रंग बता.
2: एक लाल, एक हरा.
1: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से.
2: एक सेकंड, कैंची ले ली सर, कैंची ले ली. लेकिन सिचुएशन है.
1: आस
2: पास है, लेकिन हिलने का टाइम नहीं है. हिलने का टाइम
1: हिल नहीं रहे. एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा.
2: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल.
1: फटना नहीं चाहिए, आस पास के लोगों को भी सिक्योर करना है.
2: ठीक है ठीक है,
1: बताइए. हरा काट के देख.
2: धीरे से. 1, 2, 3. Congratulations.
1: ताली बज रही है. कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर. ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था. अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटें. ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा है.
2: हाँ.
1: तो इसी को पूछा फिर तूने?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची. It's hot.
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
3: अब मिर्ची खा.
5: रेडियो मिर्ची, it's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। सो 2018 में रिलीज हुई फिल्म तुम बैड लवर्स आपके लिए नया अपडेट है। बेसिकली इस फिल्म की 8th एनिवर्सरी पे इसका जो सेकंड पार्ट आने वाला है ना, और उसमें जो नई एडिशन हुई है दैट इज आलिया भट्ट, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक स्टोरी डाली जिसमें वो इसी फिल्म से रिलेटेड एक मास्क लगा के नजर आई है, जिसके बाद से एक बार फिर तुम बैड 2 इज मेकिंग अ लॉट ऑफ बज आउट देयर। कसम से एंटिसिपेशन इज रियली हाई फॉर द मूवी। सो कॉफी विद करण सीजन 9 की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके फर्स्ट एपिसोड में इंडस्ट्री के अल्टीमेट गेस्ट हैं, एंड दैट इज नॉन अदर देन हमारे भाई जान बोले तो सलमान खान। द टीजर ऑफ दिस फर्स्ट एपिसोड इज ऑलरेडी अनाउंस्ड, जिसके बाद से द फैंस जस्ट कांट कीप काम फॉर द 14th ऑफ अक्टूबर, जिस दिन से ये शो स्ट्रीम होना शुरू होगा। सूर्या अंत से आरंभ तक, मैं बात कर रही हूँ एम पद्म कुमार डायरेक्टोरियल अपकमिंग फिल्म विच इज गोइंग टू बी अ क्राइम थ्रिलर की, जिसका फर्स्ट मोशन पोस्टर इज आउट, एंड माइंड यू इस मूवी में सनी देओल लीड रोल में नजर आने वाले हैं। उनके अलावा फिल्म में रवि किशन और प्रज्ञा जायसवाल भी होंगे, एंड द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 20th ऑफ नवंबर, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। वेल, अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही, बाकी की फिल्मी गपशप के लिए स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति, इट्स ऑल।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही थी। आपके दिमाग के घोड़े किधर किधर दौड़े, लगाम लगाइए उसको, जरा पॉइंट पे आइए। बेसिकली यहाँ पे आपको ना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं कॉल करके आपके साथ इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है राजा जी। हेलो सर, कैसे हैं आप?
3: मैं एकदम बढ़िया हूँ, अब आपसे बात करके और
0: ये लाइन बोलने की जरूरत नहीं थी, बट हाँ चलिए और अच्छा करते हैं आपकी वाइब को। जजंतरम अमंतरम के लीड एक्टर कौन थे?
3: जावेद जाफरी।
0: जावेद जाफरी डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे किस फिल्म में आ जाते हैं?
3: धमाल।
0: क्या बात। धमाल में मानव का भाई कौन है?
3: मानव का भाई अरशद वारसी।
0: क्या बात। अरशद वारसी किस फिल्म में भाई ने बोला करने का, मतलब करने का ये बोलते हैं?
3: मुन्ना भाई।
0: मुन्ना भाई में डॉक्टर अस्थाना की बेटी से किसको प्यार होता है?
3: संजय दत्त।
0: संजय दत्त किस फिल्म में जुल्मी बड़ा दुखदायक है?
3: खलनायक।
0: गाना याद किया था ना?
3: वही पहले वही आता है।
0: खलनायक में किसकी चोली के पीछे दिल है?
3: माधुरी दीक्षित।
0: माधुरी दीक्षित का घाघरा किस फिल्म में टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है?
3: ये जवानी है दीवानी।
0: ये जवानी है दीवानी में बनी के बेस्टी से किसको प्यार होता है?
3: कल की।
0: ओके, पता है। कल्कि की किस फिल्म में उनके बैग का नाम बैगवती होता है?
3: बैग का नाम बैगवती होता है। मूवी याद नहीं
0: आ रही। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे और आपको बनाएंगे हमारे आज के पहले
1: मिर्ची फिल्मची।
3: थैंक यू श्रुति।
0: तो भाई अगर इसके आगे का गेम आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल कि मिर्ची श्रुति के इंस्टाग्राम पे जाके आपको अपना नंबर भेजना होगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मिर्ची पर उसको साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रोल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को फाइनली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, only on Mirchi, it's hot.

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: Yeah. Meaty Mitchie. Brighten up your day, we will find a way. On Meaty Mitchie.
2: खेलो मगर प्यार से.
0: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
2: मैं तो मिर्ची फिल्म ची गेम की बात कर रही हूँ. बाहुमोशाय, जिसकी शुरुआत आज मेरे साथ की बैंगलोर से मयूरी जी ने. और आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए, बिकॉज शी गॉट स्टक एट अ पॉइंट, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़ी हैं सूरत से निशा जी. सो आर यू रेडी टू कंटिन्यू द गेम मैम? ऑल द बेस्ट देन. माई क्वेश्चन वॉज, ऐश्वर्या राय किस फिल्म में एक स्मॉल टाउन सिंगर होती है जो ओवरनाइट सेंसेशन बन जाती है?
4: ताल.
2: ताल में मानसी से किसको प्यार होता है?
4: अक्षय खन्ना.
2: अक्षय खन्ना किस फिल्म में एक एरोगेंट एक्टर हैं जिसको ऑस्कर जीतने से ऑब्सेशन है?
4: तीस मार खान.
2: सो तीस मार खान में वॉनबी एक्ट्रेस कौन है?
4: कैटरीना कैफ.
2: वेरी गुड. कैटरीना कैफ डाइविंग इंस्ट्रक्टर किस फिल्म में है?
4: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा.
2: ओके, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक का फोन कार से बाहर कौन फेंकता है?
4: फरहान अख्तर.
2: वेरी गुड. फरहान अख्तर किस फिल्म में खुद को ही कॉल करते हैं?
4: दीपिका पादुकोण.
2: यस.
4: कार्तिक कॉलिंग कार्तिक.
2: बहुत बढ़िया. कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में उनको किससे प्यार होता है?
4: दीपिका पादुकोण.
2: दीपिका पादुकोण किस फिल्म में साउथ इंडियन डॉन की बेटी है जो अपनी शादी से भागती है?
4: चेन्नई एक्सप्रेस.
2: और आपने भी एकदम एक्सप्रेस मोड में ये गेम कम्प्लीट किया है. और इसी के साथ आप बनी है हमारी आज की दूसरी
0: मिर्ची फिल्म जी.
4: थैंक यू सो मच श्रुति, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू.
2: सेम हियर.
4: आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नो द बॉलीवुड जस्ट गॉट यू नो इग्नाइटेड इन मी. आई एम फीलिंग सो गुड आंसरिंग दीज क्वेश्चंस.
2: एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू गॉट दैट फीलिंग, क्योंकि यही है मोटिव मेरा कि हर इंसान के अंदर के फिल्मची को जगाना है. तो बाबू मोशाय, अगर फिलहाल आपके फिल्मची कीड़े को फोमो हो रहा है, देन वरी नॉट, ये गेम कल फिर हाजिर होगा. राइट हियर ऑन मिर्ची, मैं हूँ आपके साथ.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na pierdva la burga. Milci, burga.
1: हेलो,
2: लैब से बोल रहे हैं आप? लैब?
1: हाँ जी, बात कर रहा हूँ, बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा, ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
2: भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप, मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप 9 ड्रॉप मान लो, 9 करते हो आप, 2 कह रहे हो, मैं तो 9 पकड़ के चल रहा
1: हूं। 2, 4, 9 का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
2: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप 3 ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना।
1: टाइम खराब कर रहे हैं,
2: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा
1: पेशाब लूट रहे हो आप, बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: है तो मेरा यूरिन
1: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
1: भाई, जाकर नहीं कंप्लेंट कर दे।
2: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
1: मैं नहीं दे रहा तुझे, जाकर कंप्लेंट नहीं कर दे,
2: मैं निकलवा लूंगा। ठीक है, और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहां पे भी जाना है।
2: मैं देखता हूं मेरा यूरिन कैसे।
1: हां ठीक है, देख ले।
2: ठीक है भाई,
1: हां ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: हर का ना हिट, हर दुनिया गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के चार पैरों वाले हीरोज की बात।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हो आप। और यार हिंदी सिनेमा में हीरोज तो बहुत देखे हैं हमने, जो विलन से लड़ते हैं, अपने प्यार के लिए दुनिया से टकराते हैं और जरूरत पड़ने पर जान की बाजी भी लगा देते हैं। लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी रहे हैं जिनके पास ना डायलॉग्स थे ना ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, बस चार पैर, एक वफादार दिल और अपने इंसान के लिए बे इंतहा प्यार। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही पांच फिल्मों की बात कर रही हूँ जिसमें सबसे पहले वी टॉक अबाउट द मूवी तेरी मेहरबानियां। अब नंबर दो पे बात करते हैं फिल्म हम आपके हैं कौन के बारे में, जो 1994 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय सूरज बड़जात्या। और मूवी में सलमान खान, माधुरी दीक्षित, मुनीश बैल, रेणुका शाहने जैसे अल्टीमेट एक्टर्स थे। फिल्म का बैकड्रॉप है एक कलरफुल क्लोज नेट फैमिली सेटिंग फिल्ड विद वेडिंग्स, रिचुअल्स, म्यूजिक, सेलिब्रेशन एंड रिलेशनशिप्स। और उसमें है हमारा क्यूट सा टफी, जो इस आइकॉनिक फैमिली एंटरटेनर में मात्र घर का पेट नहीं है, इनफैक्ट वो तो सेलिब्रेशंस का हिस्सा होने के साथ साथ प्रेम और निशा की लव स्टोरी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां फैमिली सर्कमस्टेंसेस की वजह से प्रेम और निशा के रिश्ते पर एक इमोशनल क्राइसिस आता है, तब टफी एक चिट्ठी ऐसी जगह पहुंचाता है जो उस कहानी का रुख ही बदल देता है। मूविंग ऑन इन द लिस्ट, नंबर तीन पे बात करते हैं फिल्म चिल्लर पार्टी के बारे में, जो रिलीज हुई थी 2011 में, डायरेक्टेड बाय नितेश तिवारी एंड विकास बैल। सो जहां तेरी मेहरबानियां एक डॉग के लॉयल्टी की कहानी थी, हम आपके हैं

एक होमलेस लड़का अपने डॉग भीड़ू के साथ सोसाइटी में आता है, तब बच्चे शुरू में उन दोनों को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे फटका उनका दोस्त बन जाता है और भीड़ू उनके जिंदगी का हिस्सा। और फिर आता है एक मेजर ट्विस्ट, एक पॉलिटिशियन स्ट्रे डॉग्स के खिलाफ एक्शन लेने की बात करता है और भीड़ू को सोसाइटी से निकाले जाने का खतरा पैदा हो जाता है। यहीं से बच्चों की एक फनी, इमोशनल और करेजियस फाइट की शुरुआत होती है अपने दोस्त भीड़ू को बचाने के लिए। वेल, मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और मेरी इस लिस्ट में अभी और दो ऐसी ही फिल्मों की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल्ड। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: पेट पेरेंट्स के लिए एक सवाल, जब आपका मूड ऑफ होता है तो क्या आपका पेट बिना पूछे आपके पास आ जाता है?
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बस यही तो मैजिक है ह्यूमन एनिमल बॉन्ड का। इनफैक्ट बॉलीवुड ने भी कभी मोती की लॉयल्टी, कभी टफी की स्मार्टनेस, तो कभी भीड़ों के लिए बच्चों की फाइट के थ्रू इस प्यार वाले लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से दिखाया है। और आज मेरे पांच का पंच की लिस्ट में ऐसी ही फिल्मों की बातें हो रही हैं, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट तेरी मेहरबानियां, नंबर दो पे हम आपके हैं कौन, नंबर तीन पे चिल्लर पार्टी, अब बारी है टू टॉक अबाउट दिल दोस्ती और डॉग्स, जो रिलीज हुई थी 2025 में, डायरेक्टेड बाय विरल शाह और मूवी में नीना गुप्ता के साथ शरद केलकर लीड रोल में थे। सो फिल्म का सेंट्रल आइडिया भी इसी कनेक्शन को सेलिब्रेट करता है कि एनिमल्स हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशी नहीं लाते बल्कि कई बार हमें हील करने, ट्रस्ट दोबारा करने और रिलेशनशिप्स को नए नजरिए से देखने में भी मदद करते हैं। इन शॉर्ट, कभी हम उनका ख्याल रखते हैं और कभी वो हमें इमोशनली संभाल लेते हैं। एंड नाउ लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, ओ माई डॉग की बात करना चाहती हूँ। साल 2026 में ही रिलीज हुई थी ये फिल्म, जो फिलहाल OTT पे भी स्ट्रीम कर रही है। डायरेक्टेड बाय अमित राय, मूवी में पंकज त्रिपाठी, पवन मल्होत्रा और राजेश कुमार जैसे स्टार्स हैं। और यहाँ बैकड्रॉप है दो पैरेलल जर्नीज का, एक आसाम में और दूसरा बिहार में, मेरे शहर पटना में। जहाँ एक तरफ एक टीनेजर अपने किडनैप्ड कुत्ते को ढूंढता है, तो वहीं एक कुत्ता अपने किडनैप्ड ओनर को ढूंढता है। सो अक्सर हम कहते हैं कि पेट्स हम पर डिपेंडेंट होते हैं, हम उन्हें खाना देते हैं, शेल्टर देते हैं, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें मिस करते हैं या हमें ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब समझ आता है कि ये रिश्ता वन साइडेड बिल्कुल नहीं है। एंड ओ माई डॉग इसी म्यूचुअल लव एंड लॉयल्टी को हाईलाइट करती है। तो बताओ, इन पांचों मूवीज में से आपने कौन कौन सी देखी है? मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके ये बातें कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

से देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot
1: and अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्ची जीतू राज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्ची के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज, only on मिर्ची इट्स हॉट।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: एक कहानी लेकिन भाषाएं अनेक।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची बेटी उन्होंने आप और एक बार को सोचिए, एक कहानी जो आपने बचपन में हिंदी में सुनी, वो कहानी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और दुनिया की दूसरी लैंग्वेजेस में और भी लोगों के दिलों तक पहुंचे तो कैसा होगा? Well, that's the power of cinema. और अब इसी पावर को एक ग्रैंड स्केल पर एक्सप्लोर करने जा रही है नमित मल्होत्रा की अपकमिंग प्रोडक्शन रामायण पार्ट वन, जिसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे, यश और सनी देओल जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। सो रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 40 लैंग्वेजेस में डब करके रिलीज किया जा रहा है। मतलब कहानी अपनी होगी लेकिन उसे समझने और महसूस करने की जुबान अलग अलग। द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 5th of November। लेकिन एक सवाल जो मेरे दिमाग में आया कि क्या इंडियन सिनेमा का ये मल्टीलिंगुअल मिशन नया है? मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि बिल्कुल नहीं यार। इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में, जब डायरेक्टर एस एस वसन की तमिल फिल्म चंद्रलेखा को हिंदी ऑडियंस तक पहुंचाया गया। ये उन अर्ली लैंडमार्क एग्जांपल्स में से एक था जब फिल्म मेकर्स ने समझा कि एक रीजनल कहानी पूरे देश की कहानी बन सकती है। और शायद इसीलिए इंडियन सिनेमा का अगला बड़ा चैप्टर सिर्फ पैन इंडिया नहीं, पैन वर्ल्ड होने वाला है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

वेंसडे है दोस्तों, यानी ना वीकेंड का स्ट्रेस ना मंडे का मेस। बस बीच की ये शाम जो कह रही है थोड़ा मुस्कुरा लो, लाइफ उतनी भी सीरियस नहीं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि जो आपके मिडवीक को बनाएगी फुल ऑन हैप्पी मोड में शानदार। वैसे आज का जो न्यू जर्सी का वेदर है ना, वो यार देखकर बस एक ही गाना मन में आता है कि हमारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मतलब एकदम फिल्मी लग रहा है, थोड़ा ब्रीजी, थोड़ा सनशाइन विद दैट पम्पकिन स्पाइस स्मेल इन द एयर। और ट्रैफिक में तो लोग यार थोड़ा बहुत विंडोज खोल के भी चल रहे हैं, क्योंकि खूबसूरत सी प्लेलिस्ट, मिर्ची की प्लेलिस्ट बैकग्राउंड में चल रही है। और ऐसे मूड में ना यार चाय भी और अच्छी लग जाती है, इफ़ नॉट चाय कॉफ़ी भी बहुत ही मीठी लगती है, मुस्कुराहट भी कंटेजियस हो जाती है। सो टुडे मिर्ची सिद्धि का एजेंडा बहुत ही सिंपल है, नो स्ट्रेस नो ड्रामा, बस गुड वाइब्स का जैम। और पता है फील गुड वाइब्स ना हमेशा एक्सपेंसिव चीज़ों से नहीं आती, मतलब कभी कभी सिर्फ एक रैंडम कॉम्प्लीमेंट भी अगर दे दो ना तो एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आती है, और एक प्यारा सा गाना बजा दो ना तो भी वो मुस्कुराहट आ जाती है। तो चलिए वेंसडे की शाम में आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ योर मूड सॉन्ग फॉर टुडे। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि, और तब तक के लिए आपके लिए ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, puscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga.
1: No vivo a la burga. Mirchi, burga. Hello?
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर. आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर. ये दो है, एक लाल है, एक हरा. इसमें से कौन से काटना है? एक लाल है, एक हरा है, कौन सा काटू सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? डेढ़ से दो मिनट.
1: पीछे हो गया.
2: फिर कटेगा कैसे?
1: भारी सामान
2: तो नहीं है सर.
1: रंग बता.
2: एक लाल, एक हरा.
1: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से.
2: कैंची ले ली सर.
1: रुकिए, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दे रहा है.
2: लेकिन सिचुएशन है.
1: आसपास
2: है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है. हिल नहीं रहे.
1: एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा.
2: बिल्कुल.
1: फटना नहीं चाहिए. आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है.
2: ठीक है.
1: हरा काट के देख. धीरे से.
2: 1, 2, 3. Congratulations.
1: ताली बज रही है. कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर. ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था. अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे. ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा है. हाँ.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

कभी नोटिस किया है, कुछ गाने ना सुनने के लिए नहीं होते, महसूस करने के लिए होते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और जैसे ही मिर्जापुर का नाम सुनते हैं ना, दिमाग में सबसे पहले गन्स, बौकाल, पावर गेम्स, रिवेंज, यही सब आता है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा गाना है जो बिल्कुल उल्टा एहसास देता है। जी हाँ, वारू फॉरएवर। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये गाना ओरिजिनल यानी वारू उसका नया वर्जन है, जो फैंस के बीच इतना ऑर्गेनिकली पॉपुलर हो गया कि यार मेकर्स ने उसे फिल्म के लिए दोबारा लाया। और इस बार श्रेया घोषाल और रोमी की आवाज ने उस इमोशन को और भी गहरा बना दिया था। कंपोजर आनंद भास्कर और लिरिसिस्ट जिनी दीवान ने उसी रूह को एक नई कहानी के साथ फिर से जिंदा किया था। और शायद यही वो बात है कि यार वारू फॉरएवर ना इतना अलग लगता है लेकिन फिर भी अपना सा लगता है, क्योंकि मिर्जापुर की इतनी वायलेंट दुनिया में भी ये गाना याद दिलाता है कि हर इंसान के अंदर ना एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होता है। तो कभी कभी सबसे लाउड कहानियों के बीच सबसे खामोश गाने ही दिल में घर बना देते हैं। तो चलिए, अगर आज का दिन थोड़ा स्लो है या बस 2 मिनट की सुकून की तलाश है तो ये गाना शायद आपकी प्लेलिस्ट में अपनी जगह बना ले। सुनते हैं वारू फॉरएवर ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: presented by Virani Jewelers.
1: हेलो न्यू जर्सी, मैं हूँ आपकी मर्ची सिद्धी और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। दोस्तों, नवरात्रि की तैयारियां हमारी तो जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और साथ ही में आपको गोल्ड जितवाने की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है विद मिर्ची 9 लाख का हार ब्रॉट टू यू बाय विरानी ज्वेलर्स। तो चलिए देखते हैं आज किसके किस्मत में गोल्ड की चेन है। आई हैव विद मी नैशल जी। हेलो नैशल जी।
2: Hey,
1: how are you? I am doing good. How are you?
2: I'm also very good.
1: तो नेशल जी, हमारे काफी सारे लिसनर्स को पता है आप हमारे कंसिस्टेंट विनर रहे हैं, तो इसलिए आज का सवाल मैं आपको थोड़ा टफ पूछने वाली हूँ, चलेगा?
2: थोड़ा इजी रखो मेरे लिए।
1: देखिए दोस्तों, नेशल जी इज दैट वन पर्सन जो हमारे साथ कई सालों से जुड़े हैं और बहुत सारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लगातार करते रहे और बहुत सारे प्राइजेस भी जीते। तो नेशल जी, हमारे कंसिस्टेंट विनर रह के कैसा लगता है आपको?
2: मुझे लगता है कि मैं कस्टमर हूँ रेडियो मिर्ची।
1: देखिए, आपकी तरफ से बाकियों को भी बताइए, कई बार लोगों को लगता है कि अरे रेडियो मिर्ची पे कॉन्टेस्ट हो रहा है, सच्ची में सोना मिलता भी है क्या? तो आप ही बताइए लोगों को कि क्या कॉन्टेस्ट होता है और कितनी धूम मचती है।
2: नहीं नहीं, सोना तो मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है।
1: बहुत नेशल जी के लॉकर में पड़ा हुआ है सारा। तो चलिए देखते हैं आज नेशल जी जीतते हैं कि नहीं। तो नेशल जी, आपके लिए बहुत ही आसान सा सवाल है, वैसे आपके लिए थोड़ा टफ सवाल है, लेकिन चलिए फिलहाल थोड़ा बहुत आसान सा सवाल भी बना के बताती हूँ आपको, ठीक है? और अगर ये सवाल का सही जवाब देते हो तो आप क्वालिफाई होता हमारे फाइनल राउंड के लिए एट विरानी ज्वेलर्स। ओके
2: ओके,
1: ठीक है, चलिए। तो आपके लिए जो सवाल है वो है, नवरात्रि का एक गाना है, हे शुभारंभ हो शुभारंभ, ये गाना कौन सी मूवी का है? नेशल जी, हर बार आप जीत जाते हो, लेकिन इस बार आपने गलत जवाब दे दिया। ऐसा मैं नहीं कह सकती, आपने सही जवाब दिया। चलो, थोड़ा डराना तो बनता है आपको नेशल जी। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप क्वालिफाई होते हो हमारे फाइनल राउंड के लिए जिसमें आप जीत सकते हो सोने की चेन। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
2: ओके, वाओ, थैंक यू सो मच।
1: और दोस्तों, अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आज ही टाइप कीजिए नवरात्रि, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए 9033647244, या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और नेशल जी, जाते जाते हम मिर्ची पे क्या बोलते हैं?
2: सुनते रहो रेडियो मिर्ची।
1: क्या बात है, इट्स हॉट।
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

हॉरर मूवीज में एक चीज नोटिस की है, जब भी कोई कहता है कि उस जंगल में मत जाना, बॉलीवुड का हीरो सबसे पहले वही जाता है। शमशान दवाई सुन रहे हैं आप, नहु आपकी मर्जी सुनती है। और हॉरर की बात इसलिए क्योंकि वन को लेकर एक इंटरेस्टिंग क्यूरियोसिटी है। ये वो फोक हॉरर वाली दुनिया है जहाँ डर सिर्फ भूतों से नहीं आता, कभी जंगल की खामोशी, कभी पुरानी कहानियों, और कभी उन चीजों से जिसे हम समझ नहीं पाते। और मुझे तो यार इंडियन फोक हॉरर का कॉन्सेप्ट बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि एक तरफ हमारी दादी नानी की सुनी हुई कहानियां और दूसरी तरफ मॉडर्न सिनेमा का सस्पेंस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो कभी कभी जो दिखाई नहीं जाती वो ना ज्यादा डराती है। तो आप भी बताओ, हॉरर मूवी में आपको सबसे ज्यादा क्या डराता है? अचानक आने वाले भूत, या वो सस्पेंस जब पता ही नहीं चलता कि आगे क्या होने वाला है? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए सुनते हैं ये अगला गाना, क्या पता ये आपके लिए वो चिल्स लेकर आए। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड में कंफ्यूजन एक बार शुरू हो जाए ना, तो एक झूठ को संभालने के लिए 10 नए एक्सप्लेनेशन रेडी करने पड़ते हैं। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्दी। और आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की उड़ता तीर को लेकर जितने भी डिस्कशंस हो रहे हैं ना, उसने मुझे बॉलीवुड की एक फेवरेट कैटेगरी की याद दिला दी, कन्फ्यूजन कॉमेडी। यानी वो फिल्में जहाँ एक गलत आइडेंटिटी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग या एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इतने सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू कर देते हैं कि ऑडियंस बस सोचती रहती है कि अब ये हीरो यहाँ से निकलेगा कैसे। जैसे कि प्रिया दर्शन के काफ़ी सारे मूवीज़, हेरा फेरी हो, फिर हंगामा हो, और आयुष्मान का जब नाम आता है तो मुझे वैसे भी स्लाइटली अनयूजुअल कैरेक्टर्स और ऑफ बिट सिचुएशन याद आ ही जाते हैं, क्योंकि आयुष्मान हो और हटके कैरेक्टर ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन मुझे पर्सनली वो कॉमेडी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है जहां जोक से ज्यादा सिचुएशन ही फनी हो। तो आप भी बताइए कि आपको कौन से टाइप की कॉमेडी पसंद है, हेरा फेरी जैसे फुल कंफ्यूजन या बधाई हो जैसे एवरीडे लाइफ कॉमेडी। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्दी SIDDHI। तो चलिए अब कंफ्यूजन खत्म, म्यूजिक शुरू, यानी अगला गाना आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vizba la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं सब हो जाएगा सब।
1: मैं
2: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ।

0: ठीक है,
1: क्यों आ जाऊं?
0: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
0: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
0: वो, ये मेमोरी पहचान ना देनी है अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
0: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
0: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
0: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? लेवल का इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
0: वही लेवल 7।
1: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है जिससे तुम्हें बात करनी है? मैं वो नहीं हूँ।
0: अग्रेशन,
1: कौन हो तुम मेरे?
0: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
1: अबे तू है कौन, तू ये बता।
0: ना ऐसे, ये है 9th लेवल। अगर अभी नहीं आया ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल दो अपनी गांव में, ठीक है?
0: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
1: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
0: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते, कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि ऑप्शंस क्या है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और लाइफ के बड़े डिसीजंस में हम अक्सर सिर्फ दो चॉइसेस देखते हैं, यस या नो, अभी या बाद में, लेकिन बीच में भी कई पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और जब बात फाइनेंसेस और होम ओनरशिप की आए तो डिसीजंस लेने से पहले अपने ऑप्शंस को समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बाय करना हो, रीफाइनेंस करना हो या फिलहाल वेट करना हो, पहले समझिए कि आपके ऑप्शंस क्या है, और वही सिंप्लीफाई करेंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रोल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeetuRaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इतने सालों में बॉलीवुड के भी कितने सारे नए रूप देखने मिले हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ब्लैक एंड व्हाइट से कलर, सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स, कैसेट से स्ट्रीमिंग, यार बॉलीवुड बदलता गया लेकिन कुछ क्लासिक्स की वैल्यू कभी कम नहीं हुई। और किचन में भी कुछ फ्लेवर्स बिल्कुल ही वैसे ही टाइमलेस है। एक जमाना था जब घर में मसाला हाथों से घिसे जाते थे, प्यार से कूटे जाते थे, धीरे धीरे पीसे जाते थे। धनिया, मिर्च और मसालों की खुशबू किचन से निकल के पूरे घर में फैल जाती थी। और फिर वही चटनी टेबल पर आती और सिंपल सा समोसा, पकोड़ा, सैंडविच या पराठा सडनली कुछ और ही बन जाता था। लेकिन आज तो यार सिलबट्टा हर किचन में नहीं होगा, इतना टाइम भी शायद नहीं होगा, लेकिन वो चटकारा हमें अभी भी चाहिए। और उसी पुराने एहसास को आज के किचन तक लाते हैं दीप चटनी। आज ही नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर से ले आइए, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और क्लासिक्स की बात निकली है तो एक बॉलीवुड क्लासिक तो बनता है दोस्तों, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: तारीफ तेरे

अगर मंथ्स का बैकग्राउंड स्कोर होता ना तो अक्टूबर का साउंड ट्रैक डेफिनेटली थोड़ा सिनेमैटिक होता। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मर्जी सिद्धि। और इमेजिन कीजिए कि यार पत्तों के कलर बदल रहे हैं हवा में, वो हल्का सा क्रिस्प फील, कॉफी शॉप्स में पम्पकिन स्पाइस एंड एवरीथिंग नाइस, सनसेट थोड़ा जल्दी और कार में एक परफेक्ट बॉलीवुड मेलेडी, तो बस सडनली राउट वन भी ना यश चोपड़ा के सेट जैसा लगता है। और मुझे लगता है कि यार हर सीजन का एक म्यूजिक मूड तो जरूर होता है, मतलब समर में ऐसे रोड ट्रिप वाले गाने, विंटर में कोजी मेलेडीज, और फॉल में वो गाने जो थोड़ा वार्म्थ, थोड़ा रोमांटिक और थोड़ी ड्रीमी फील होते हैं। तो आज बताइए कि आपका अक्टूबर का ऑफिशियल बॉलीवुड साउंड ट्रैक कौन सा गाना होना चाहिए। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आवर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और सिर्फ एक ही गाना चूज कर सकते हो। चलिए लेकिन ये गाना मेरी तरफ से अक्टूबर साउंड ट्रैक में एंट्री मार रहा है, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vida, la burga. Energy, burga.
1: हेलो,
2: लैब से बोल रहे हैं आप? लैब?
1: हाँ जी, बात कर रहा हूँ, बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा कि ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
2: भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा हूं।
1: भैया दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
2: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना।
1: टाइम खराब कर रहे हैं,
2: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा
1: पेशाब लूट रहे हो आप, क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: है तो मेरा यूरिन
1: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
1: भाई, जाकर कंप्लेंट कर दे।
2: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
1: मैं नहीं दे रहा, तुझे
2: ठीक है, मैं निकलवा लूंगा।
1: ठीक है,
2: और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहां पे भी जाना है।
2: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
1: हाँ ठीक है, देख ले देख ले।
2: ठीक है भाई,
1: हाँ ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों, न्यू जर्सी के लिविंग रूम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्दी। और वीकेंड ऑफिशियली अराइव कर चुका है, रिमोट लोकेट हो गया है, फैमिली ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो क्या देखने वाले। लेकिन स्नैक डिपार्टमेंट में एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुई है। जी हाँ, मतलब नॉर्मली यार पॉपकॉर्न की न्यूज़ में ना ज़्यादा सस्पेंस नहीं होता, पॉप करो बोल में डालो और डन। लेकिन इस बार स्टोरी में ट्विस्ट है, यानी हमारे इंडियन किचन्स का वो फेमिलियर गोल्डन इंग्रेडिएंट हल्दी अब पहुंच गया है पॉपकॉर्न्स तक। यस, टर्मरिक एंड पॉपकॉर्न आर टुगेदर, यानी फेमिलियर क्रंच के साथ एक कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड देसी फ्लेवर। और इस ब्रेकिंग स्नैक न्यूज के सेंटर में है दीप टर्मरिक पॉपकॉर्न, टर्मरिकली डिलीशियस। यानी अगली मूवी नाइट पर हेडलाइन खुद वेरीफाई कीजिए, आज ही ले आइए फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और अब स्नैक बुलेटिन कंप्लीट करते हैं, चलिए थोड़ी रियल हेडलाइन से ब्रेक लेते हैं और बॉलीवुड के सुरों में चलते हैं। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: गुड इवनिंग दोस्तों, नवरात्रि के 9 रातें यानी गोल्ड जीतने के 9 चांसेस और मिर्ची पर आपकी किस्मत का धमाका। वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट मिर्ची 9 लक का हार। तो चलिए देखते हैं आज किसके नाम होती है गोल्ड की चमक। नमस्ते मनन जी।
2: हेलो, नमस्ते,
1: कैसे हो आप?
2: एकदम मस्त, आप बताइए।
1: एकदम बढ़िया। क्या आप नवरात्रि के लिए तैयार हो?
2: एकदम, वेटिंग फॉर इट।
1: और क्या आप गोल्ड जीतने के लिए तैयार हो?
2: एकदम एकदम।
1: तो चलिए मैं आपको पूछूंगी एक बहुत ही आसान सा बॉलीवुड का सवाल और नवरात्रि से ही रिलेटेड है, और उसका अगर आप सही जवाब देते हो तो आप पहुंच जाओगे हमारे अगले राउंड में। ठीक है?
2: ठीक है।
1: चलिए, तो आपका बहुत आसान सा जो सवाल है वो ये है कि नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा गाना है, नगाड़े संग ढोल बाजे। तो ये जो गाना है, इस गाने पे कौन सी एक्ट्रेस ने डांस किया है?
2: दीपिका पादुकोण।
1: अरे क्या बात है, एक सेकंड भी नहीं लगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप एंटर होते हो हमारे अगले राउंड में। तो दोस्तों, आप भी अगर अपनी किस्मत चमकाना चाहते हो तो जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए हमारे मिर्ची 9 लक का हार में, ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स। नवरात्रि के 9 नाइट्स और गोल्ड जीतने के 9 गोल्डन चांसेस। तो जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए, टाइप कीजिए नवरात्रि और भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो @RJMirchiSindhi SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉकस्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

कुछ ऐसे एल्बम्स जो आज भी सुपर हिट है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और बॉलीवुड में ना कुछ ऐसे एल्बम्स बने हैं जिसमें यार एक से एक गाना एक से बढ़कर एक है। मतलब एक 2008 में जो एल्बम आई थी जाने तू या जाने ना मूवी जो बनी थी, उसका हर एक गाना वंडरफुली था। कंपोजर AR रहमान का ऑब्वियसली कंपोज म्यूजिक था, तो हर एक गाना एक से बढ़कर एक होना ही चाहिए था। लेकिन जनरली AR रहमान के जो गाने होते हैं वो बहुत ही यू नो माइल्ड टोन, अमेजिंग, सूदिंग टू हियर होते हैं। लेकिन जब उन्होंने जाने तू या जाने ना का म्यूजिक बनाया था, दैट वॉज एंटायरली अ जेन जी थीम। जी हाँ, पप्पू गान डांस वाला वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम जाने तू या जाने ना एल्बम, जो कि यार तभी ऑलरेडी जेन जी एंथम बन गया था, बिफोर जेन जी वॉज इवन अ टर्म। जी हाँ, मतलब ये जो एक गाना है वो इंस्पायर्ड था बाय एवरी गर्ल्स अनोइंग क्यूट क्रश, जो कि एकदम परफेक्ट था। मतलब मस्क्यूलर था, पॉपुलर था, बस उसको नाचना नहीं आता था। और एक्चुअली ना पप्पू ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो सच्ची में रियल लाइफ बॉलीवुड पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम्स, बट अगर आप गेस कर सकते हो तो मुझे जरूर बताइए कि बॉलीवुड में पप्पू जैसा कैरेक्टर कौन है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए सुनते हैं ये अमेजिंग सा गाना पप्पू कांट डांस फ्रॉम जाने तू या जाने ना का एल्बम जो 2008 में बनी थी, जिसके सिंगर है बेनी दयाल और सतीश सुब्रमण्यम, कंपोजर है AR रहमान। और हाँ यार, ब्लेजी का वो रैप हम कैसे भूल सकते हैं। वैसे वो जो रैप था वो एक रात पहले ही बनाया गया था बिफोर द फाइनल मिक्स। तो चलिए सुनते हैं दिस एवरग्रीन सॉन्ग पप्पू कांट डांस वाला ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कुछ ऐसे एल्बम्स जिनके गाने एक से बढ़कर एक है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी और बात हो रही है 2008 के एल्बम की जाने तू या जाने ना, जिसको कंपोज किया गया है AR रहमान ने। और दोस्तों इसके हर एक गाना एक से बढ़कर एक है, और पप्पू गान डांस साला तो हमारा फेवरेट है ही, बट अनादर सॉन्ग, अनादर ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम इज नजरे मिलाना नजरे चुराना। जी हाँ, सिंगर्स AR रहमान, बनी दयाल, सतीश सुब्रमण्यम, अगेन कंपोज बाय AR रहमान। ये जो गाना बनाया था ना, वो बनाया गया था टू मिरर जेन वाई रिलेशनशिप, मतलब कंफ्यूजिंग, क्यूट से, कॉम्प्लिकेटेड से, और इस तरह से फिरमाया गया इस गाने को कि बस कोई कोरियोग्राफी नहीं थी, बस वाइब्स थे, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ऐसा लगता था कि चलो सारे दोस्त एक साथ गए हैं, म्यूज़िक इज़ ऑल्सो वेरी वेरी लाइट, और एक साथ जब हम सारे दोस्त मिलते हैं, कोई ट्रिप पर मिलते हैं, हाउस पार्टी में मिलते हैं, तो एक माहौल जो बन जाता है और गाने गाने का जो मन करता है ना, बस वही माहौल इस गाने ने बनाया था। और शायद इसीलिए काफी बार जब हम अपने दोस्तों के साथ ट्रिप्स पे जाते हैं तो ये गाना जरूर सुनते हैं, नजरे मिलाना नजरे चुराना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ जाने तू या जाने ना एल्बम, राइट फॉर यू हियर ओनली ऑन मिर्ची। वैसे दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट अनादर एवरग्रीन एल्बम जिसके ऑलमोस्ट सारे गाने बहुत ही अमेजिंग है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए नजरे मिलाना नजरे चुराना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vizba la burga. Milci, burga.
1: Hello?
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर. आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर. ये दो है, एक लाल है, एक हरा. इसमें से कौन से काटना है
1: सर?
2: एक लाल एक हरा, कौन से काटूं सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? डेढ़ से दो मिनट.
1: पीछे हो गया
2: फिर कटेगा कैसे?
1: भारी सामान
2: तो नहीं है सर.
1: रंग बता
2: एक लाल एक हरा.
1: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से.
2: एक सेकंड, कैंची ले ली सर, कैंची ले ली. लेकिन सिचुएशन है.
1: आस
2: पास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है.
1: एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा.
2: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल.
1: फटना नहीं चाहिए, आस पास के लोगों को भी सिक्योर करना है.
2: ठीक है बताइए.
1: हरा काट के देख धीरे से.
2: वन टू थ्री. कंग्रेचुलेशंस.
1: ताली बज रही है. कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर. ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था. अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटें. ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा है.
2: हाँ
1: तो मैं इसी को पूछा फिर तूने.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

कुछ ऐसे एल्बम्स जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बातें हो रही है कुछ ऐसे एल्बम्स के बारे में जिसका यार हर एक गाना अमेजिंग है। तो आज 2008 के जाने तो या जाने ना के बारे में बात हो रही है, जिसमें यार इतने सारे गाने हैं और हर एक गाना उतना ही एवरग्रीन है। कंपोज्ड बाय AR रहमान, और इस एल्बम के हमने पप्पू कान डांस साला, नजरे मिलाना, नजरे चुराना, इन गानों के बारे में तो बात की ही है, बट एक ऐसा गाना है जिसके वजह से अदिति नाम की लड़की फेमस हो गई। जी हाँ, कभी कभी अदिति संग बाय राशिद अली। दोस्तों यार, ये वो गाना है ना कि अपनी जो दोस्त है अदिति, अगर आपकी भी कोई दोस्त है अदिति, तो ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि आपने कभी उसको ये गाना डेडिकेट नहीं किया है। जी हाँ, अदिति रूठ जाए, अदिति सैड हो जाए, तो बस कभी कभी अदिति बजा दिया जाए। वैसे तो यार, ये जब गाना बनाया गया था तब राशिद अली कंप्लीटली नए थे। वो बस एक लंडन बेस्ड गिटारिस्ट थे जो रहमान जी के साथ जैम किया करते थे। लेकिन तब AR रहमान ने डिसाइड किया कि इस गाने के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि ये गाना एक यूथफुल ट्रैक है, उनकी आवाज़ बहुत ही अमेजिंग लगेगी, एक फ्रेश वॉइस मिलेगा इस ट्रैक के लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसी के साथ राशिद अली अपना पहला गाना गाएंगे, कभी कभी अदिति। तो चलिए सुनते हैं कभी कभी अदिति फ्रॉम द मूवी जाने तू या जाने ना। वैसे दोस्तों, आप भी मुझे बता सकते हो ऐसे कौन से एल्बम्स हैं जो आपको पसंद है, जिसका यार हर एक गाना बहुत अमेजिंग है, उस एल्बम के बारे में हम बातें करेंगे राइट हियर ऑन मिर्ची। तो जल्दी से DM कीजिए ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और तब तक के लिए जानी तो फ्रेश वॉइस मिलेगा इस ट्रैक के लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसी के साथ राशिद अली अपना पहला गाना गाएंगे, कभी कभी अदिति। तो चलिए सुनते हैं कभी कभी अदिति फ्रॉम द मूवी जाने तू या जाने ना। वैसे दोस्तों, आप भी मुझे बता सकते हो ऐसे कौन से एल्बम्स हैं जो आपको पसंद है, जिसका यार हर एक गाना बहुत अमेजिंग है, उस एल्बम के बारे में हम बातें करेंगे राइट हियर ऑन मिर्ची। तो जल्दी से DM कीजिए ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और तब तक के लिए जाने तू या जाने ना का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

न सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: हेलो न्यू जर्सी, नवरात्रि की धूम शुरू हो चुकी है और नवरात्रि के 9 रातों में गोल्ड चेन जीतने का मौका आपकी किस्मत में है या नहीं, अगर ये जानना है तो जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए क्योंकि वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची 9 लक का हार। तो दोस्तों, आज किसकी किस्मत में गोल्ड की चमक है, चलिए देखते हैं। नमस्ते अवनी जी, कैसे हो आप?
2: बस मजे में, आप बताओ?
1: मैं भी एकदम मजे में, और सबसे ज्यादा मजे में तो इसलिए हूँ क्योंकि आपके

0: मुझे मिर्ची 9 लख का हार खेलने मिलने वाला है, brought to you by विरानी ज्वेलर्स। तो क्या आप एक्साइटेड हो?
1: Yes, yes, I'm very excited.
0: तो अभी आपको मैं पूछूंगी एक सवाल, बहुत ही आसान सा, नवरात्रि से रिलेटेड सवाल, बॉलीवुड से रिलेटेड सवाल। उसका सही जवाब देते हो तो आप पहुंचोगे हमारे नेक्स्ट फाइनल राउंड में, जिसमें आप जीत सकते हो गोल्ड चेन। ओके? चलिए, तो अवनी जी आपका सवाल है, एक बहुत ही प्यारा सा नवरात्रि का गाना है, ढोली तारो ढोल बाजे, उसमें सलमान खान के साथ एक्ट्रेस कौन है?
1: ऐश्वर्या राय।
0: पक्का?
1: यस।
0: ओहो, ये तो गलत हो गया, ऐसा मैं नहीं कह सकती। बिल्कुल सही जवाब अवनी जी।
1: थैंक यू।
0: तो आप क्वालिफाई होते हो हमारे फाइनल राउंड के लिए, यानी मिर्ची 9 लख का हार जीतने के लिए, ब्रॉट टू यू बाय विरानी ज्वेलर्स। और दोस्तों, अगर आप भी मिर्ची 9 लख का हार में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जल्दी से नवरात्रि टाइप कीजिए 9033647244 हमारे मिर्ची के नंबर पर, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए @RJMirchiSiddhi, क्योंकि यार एक जो 9 रातें होने वाली है उसमें 9 मौके आपको मिलेंगे टू विन गोल्ड चेन। तो आज ही रजिस्टर कीजिए। थैंक यू सो मच अवनी जी, सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची 9 लख का हार, प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स।

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन आल्सो फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन, विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रेकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू। मिर्ची बायोस्कोप साथ जीतूराज, जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

शाम शाम लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा एट @rjmirchisiddhi SIDDHI और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: Roshi darling, please come for this amazing charity event jo maine plan kiya hai. Usme just wear like your nicest chaniya choli because we're going to do a ramp walk. Or is walk mein because we're going to make it a charitable event. Sare paise we will give towards charity of course. And aise exciting ho jayega na, sab log mil bhi lenge. Nahi to festive season ke alawa kahan milne ka hota hai. I think you should totally come. And I was like, of course I will come Ritu aunty. Aur man mein main soch rahi hu ki hey bhagwan, vomit. बट द थिंग इज ठीक है कि रितु आंटी का जो नेफ्यू है जो लंदन से विजिट कर रहा है विनायक, ही इज रियली क्यूट. और विनायक की वजह से मैं इस चैरिटेबल फंक्शन में जाऊंगी भी, चनिया चोली पहनूंगी भी और ये अजीब सा रैंप वॉक करूंगी भी और भगवान से प्रार्थना भी करूंगी कि मैं गिरूं ही ना, और अगर गिरूं तो सीधा विनायक की गोदी में.